0: गला करे कनेरिया कसम न पाए साग, गला करे कनेरिया खसम न पाए साग, आप गवाए सेवा करे ता किच पाए मान, नानक जिसन लगा तिसमें लै लगा सो प्रवान। महला दूजा, जो जी हो सो गवाए मौका कया वाओ, बीजे बिख मंगे अमृत वेखो न्याओ। महला दूजा,
1: नाल याने दोस्ती कदे ना आवे रास, जे हा जाने ते हो वरतै वेखो को निरजास, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुकम न चलै कही बने अरदास, कूड़ का माने है कूड़ो होवे नानक सिफत विगास। महला दूजा, नाल याने दोस्ती वडारू स्यों ने हो, पानी अंदर लीक जाओ।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ 'ਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਨੇ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਲ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू

0: करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश 4थे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ज्ञान अमृत।

0: जो मनुख पुस्तकां दा अपमान करदा है वो अपनी किस्मत दा अपमान करदा है, क्योंकि पुस्तकां नाल ही मनुख अपना जीवन अते किस्मत बना सकदा है।
1: एसी ज्ञान अमृत। आओ हुण सरवण करदे हां भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना।

मंडप में श्रीराम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना

मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गई। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ, श्रद्धा, योग तथा ज्ञान, इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

0: कारयति यदा पञ्चसप्तत्युत्तर ऊनविंशतितमवर्षस्य जून मासस्य पञ्चविंशतिः दिनाङ्के भारतीयसंविधानस्य अवमानना कृता। अनेन सहैव अयं दिवसः आपत्काले अत्याचारैः प्रताडितेभ्यः प्रत्येकं जनेभ्यः श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयितुं दिवसो वर्तते। अस्मिन्नेव दिने तत्कालीनः राष्ट्रपतिः फखरुद्दीन अली अहमदः आन्तरिक अशान्तेः कारणं प्रदर्श्य देशे राष्ट्रियापत्कालस्य घोषणाम् अकरोत्। देहल्याम् अस्य मासस्य त्रिंशत् दिनाङ्कात् आरभ्यमाणस्य मतदातृसूचीनां विशेषगहन पुनरीक्षणस्य अन्तर्गतं गृहं गृहं गत्वा गणना कार्यक्रममभिलक्ष्य देहल्याः मुख्य निर्वाचनाधिकारिण ह्यः नवदिल्ल्यां विभिन्न राजनैतिक दलानां प्रतिनिधिभिः सह एका सभा आहूता। मुख्य निर्वाचनाधिकारिणः एकेन विवरणेन स्पष्टीकृतं यत् अस्यां गोष्ठ्यां भारतीय जनता पार्टी इति दलम्, आम आदमी पार्टी इति दलं तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि प्रमुखाणां राजनैतिक दलानां प्रतिनिधयः समुपस्थिताः आसन्। कार्यालयानुसारं मुख्य निर्वाचनाधिकारी प्रत्यपादयत् यत् कोऽपि योग्यः नागरिकः न वञ्चितः स्यात्, सहैव कोऽपि अयोग्यः जनः मतदातृसूच्यां न सम्मिलितो भवेत्। अनेन सहैव गणनाचरणे अनुपालनीयानां प्रमुखाणां गतिविधीनां विषयेऽपि राजनैतिकदलानि विस्तरेण सूचितानि। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य देशस्य उत्तरपूर्वीयक्षेत्रेषु झारखण्ड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उपहिमालय, पश्चिमबङ्ग, तेलङ्गना, तटीयकर्णाटक, कोङ्कणं समेत्य गोवाक्षेत्रस्य कतिपयेषु भागेषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं प्रख्यापितम्। विभागानुसारम् अद्य पश्चिमराजस्थानक्षेत्रे झञ्झावातस्य सम्भावनापि वर्तते। अत्रावधेयं यत् अद्य बिहार, पूर्वमध्यप्रदेश, पूर्व उत्तरप्रदेशस्य च नानास्थानेषु उष्णतरङ्गस्यानुमानमपि विभागेनानेन प्रकटीकृतम्। अपरत्र अद्य देहल्याम् आंशिकरूपेण मेघाच्छादनं नभः भविष्यति। सहैव अपराह्णे सायंकाले वा विद्युद्गर्जनेन वृष्टेः सम्भावनापि वर्तते। सम्प्रति क्रीडावार्तासु आईसीसी महिला टी20 विश्वकप स्पर्धायाम् अद्य भारतस्य सम्मुखीकरणं बांग्लादेशेन सह भविष्यति। स्पर्धेयं मैंचेस्टर नगरस्य एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रीडांगणे आयोज्यते। या भारतीय समयानुसारं सायंकाले सप्तवादने समारप्स्यते। हरमनप्रीत कौरस्य नेतृत्वे भारतीय महिला दलं विमेन इन ब्लू संप्रति स्वसमूहे द्वितीयं स्थानं भजते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343 शरिया 6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए है जलंधर केंद्र। सवेर दे 7 बजे ने पेश ने मुख खबरां। व्यापार ते सनत मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी व्यापार डेलीगेशन का भारत दौरा दोवां देशों विचकार तजवीज़ दुवाले व्यापार समझौते नूं अगे वधाउण वाले एक अहम कदम है। भारत ते रूस 2030 तक अपने दुवाले व्यापार नूं 100 अरब अमरीकी डॉलर तक वधाउण दे टीचे नाल काम कर रहे ने। पंजाब अज तो वोटर सूचियां दे महीना पर चलण वाली विशेष गहन सोध सर शुरू करेगा। ये मुहिम 24 जुलाई 2026 तक जारी रहेगी। भारत की राष्ट्रीय शाहर अथॉरिटी ने राष्ट्रीय शाहरहां ते नाजायज़ कब्जियां ते अण अधिकृत पार्किंग विरुद्ध कार्रवाई तेज की। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जलंधर च क्रॉसिंग गुरु नानकपुरा ते बस स्टैंड तो गड़ा रोड मुख रेलवे फाटकों ते बनाए जाने वाले ओवरब्रिजां दा नींह पत्थर रख्या ते इन्हां ते करीब 113 करोड़ रुपए

0: जगह पनीर या सब्जी, हूँ कई लोग पनीर में ही सब्जी बना देते हैं। सो ग्रीन वेजिटेबल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं लीफी, मतलब कोई भी हरी सब्जी आजकल जिन्हें किया है, तोरी है कुछ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी सीजनल वेजिटेबल, आउट ऑफ सीजन लैंड भी लोड नहीं है, सीजनल वेजिटेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। या सैलड के तौर पर खा ली, जी सब्जी ते फ्रूट्स है, ये सानू वाइटमिन ते मिनरल दिंदी हैं। चौथी गल है, वी शुड कीप अवर सेल्फ हाइड्रेटेड। हुण तां चलो गर्मियां ने, सर्दियां च मोस्टली हुंदा कि पानी पीना ही भूल जाईदा रोज। हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब जे कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं है या कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो मिनिमम 2 लीटर पानी अंदर जाना चाहिए। पानी का मतलब है लिक्विड, मिनिमम इन्ना का मतलब होना ही चाहिए सेवन। ते जब विटामिन सी थोड़ी दाल या सब्जी विच पैंदी है, जो आयरन है उस दाल विच या उस सब्जी विच, वो थोड़ी बॉडी नू अवेलेबल हो जाता है। इट ब्रेक्स डाउन फ्रॉम अनअवेलेबल टू अवेलेबल थिंग, फेरिक टू फेरस फॉर्म। ते थोड़े दोनों लाभ हो गए, आयरन भी मिल गया, थोनू विटामिन सी भी मिल गई। जिवें हुण पुदीना अजकल आ रहा है, पुदीना धनिया की चटनी बना के, इट इज रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट, लोड्स ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट। अवेयरनेस की जरूरत है, पता ही नहीं होगा कि प्लेट विच की होना चाहिए, ते फिर वो मिस हो जाती है। लोग कर सकते ने पर उन्होंने पता नहीं। जिवें लेट उठोगे, लेट खाओगे, टीवी के अगे बैठ जाओगे, वो थोड़े ना इन्ना लिथार्जी ते इन्ना डिप्रेशन वैसे ही आ जाएगा, फिर वो खान का साइकिल नहीं खत्म होंदा। देखो असी शुरू करते हैं प्रॉब्लम अपने, सानू ही खत्म करनी है अपने आप। जिन्ना असी अपनी बॉडी का ध्यान ते डाइट का ध्यान रखांगे, ओना ही साडा माइंड भी फ्रेश रहेगा, दैट इज फॉर श्योर। बिल्कुल ठीक है, वी आर वॉट वी ईट, सब नु दिखता है ते अपने आप नु सब तो पहला महसूस होंदा है।
1: बिल्कुल। सो डॉक्टर नैंसी सैनी जी, तुसी नाल जुड़े गल्लां बातां सांझे कीतीआं, बहुत बहुत शुक्रिया समा देने लई।
0: थैंक यू सो मच।

आज है 25 जून, और 25 जून का दिन अंतरराष्ट्रीय समुद्री जहाज़ दिवस हर साल मनाया जाता है। 25 जून का यह दिन विश्व व्यापार ते विश्व अर्थव्यवस्था विच समुद्री यात्रियों के महत्वपूर्ण योगदान को मानता देने लिए मनाया जाता है। 2010 विच अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा स्थापित यह दिन संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक त्यौहार है। यह दिवस 2010 विच मनीला विच हुई डिप्लोमैटिक कॉन्फ्रेंस दौरान आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया सी। अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार विच उन्होंने योगदान लिए समुद्री यात्रियों का धन्यवाद करना। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन सालाना मुहिम की अगवाई करता है, जो अक्सर एक खास समुद्री थीम पर केंद्रित होता है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्रियों की भलाई ते सहायता नैटवर्क वर्गिया संस्थावां प्रोग्रामा की मेज़बान करते हैं, तो दुनिया भर के समुद्री यात्रियों की सहायता लिए स्रोत प्रदान करते हैं। हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द सी फेयर मना रहे हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री जहाज दिवस। तो इस साल का थीम है, यानी कि 2026 का, विश्व व्यापार को संभालना जोखम चुकना। यह मुहिम विश्वव्यापी समुद्री कार्यबल को श्रद्धांजलि भेंट करती है, उन्होंने लचकीलेपन ते उन्होंने सामना करने वाले खतरे को उजागर करती है, खास करके संघर्ष प्रभावित खेतर विच। ते थीम जड़ा है विश्व अर्थव्यवस्था को कायम रखने ते मानवतावादी सहायता प्रदान करने विच मलाहां की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। ते अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ते संयुक्त राष्ट्र दे 71 जनरल समेत प्रमुख संगठन दे अधिकारी इस दिन की वरतों मलाहां की सुरक्षा लई बेहतर सुरक्षा ते सत्कार की मंग करने लई कर रहे हैं।

करे मुझसे, अरे है कोई हिम्मत वाली मुकाबला करे मुझसे, अरे है कोई हिम्मत वाली मुकाबला करे मुझसे।

0: चल चल।
1: देखो जी, प्यार हो तकरार ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, पर साडे कोई तकरार नहीं है। असी रोज़ाना प्रोग्राम लेके आने हैं। समा होंदा सवेरे 7 बजे, 7 बजे मुख खबरों तो बाद असी प्रोग्राम पेश करते हैं सोनी सवेरे। इस करके असी कहने चाहते हैं कि देखो बच्चों वास्ते कॉम्पीटिशन का युग है, इस करके करो कॉम्पीटिशन की ढेर सारी तैयारी और अगे बताओ। यही सी प्रोग्राम सोनी सवेर ते 8 बज रहे हैं। सुनते हैं समाचार प्रभात 7:30 बजे, मॉर्निंग न्यूज़ 8:30, पंजाबी खबरें। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी

0: की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
4: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप एक पड़ाव चयनित किया गया है।
3: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री

0: जी पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और

0: सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Prime Minister Modi also assessed progress under the TB Mukt Bharat Abhiyan. More from our correspondent.
3: During the meeting, Prime Minister Narendra Modi reviewed 4 major infrastructure aimed at enhancing connectivity, industrial development and public welfare. He directed ministries and state governments to resolve pending issues on a mission mode and ensure timely completion. He also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for better planning and monitoring of projects. Mr. Modi also reviewed the progress of TB Mukt Bharat Abhiyan and suggested leveraging artificial intelligence and involving NCC cadets and My Bharat volunteers in awareness and community mobilization efforts. Reviewing grievances related to cybercrime and digital arrest frauds, the Prime Minister called for stronger coordination.

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे नालो नाल नाल ही इसका प्रसारण दूरदर्शन दे नैशनल चैनल डीडी न्यूज डीडी भारती डीडी इंडिया ते डीडी किसान चैनल ते भी किया जाएगा प्रधानमंत्री होरां दी मन की बात दा पंजाबी रूपांतर तुसी साडे प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स FM 102.7 मेगाहर्ट्स DTH दी AIR पंजाब सेवा DRM 864 किलोहर्ट्स FM 100.6 मेगाहर्ट्स विविध भारती FM 103.6 मेगाहर्ट्स अमृतसर FM 100.9 मेगाहर्ट्स FM 100.8 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी बठिंडा आकाशवाणी पटियाला विविध भारती लुधियाना ते आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुन सकोगे इस तो फौरन बाद पंजाबी रूपांतर दा मुड़ प्रसारण किया जाएगा रात 8 बजे सुनना जरूर मन की बात दी 135वीं कड़ी इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां तियां तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से नाल दी नाल तुसी ये प्रसारण सुन रहे हो साडे DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा तो भी। थानू दस दईए कि तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण पेशा प्रोग्राम महक पंजाब दी, आओ सुनदे हैं इस अंतर्गत पंजाबी फिल्मों तो गीत। सुनते हैं डाकू जगत सिंह फिल्म का गीत, आवाज़ है आशा भोसले की।

शमशाद बेगम, मोहम्मद रफ़ी ते साथियों तो सुन रहे सी फिल्म सी यमला जट। हुण सुनदे आ महेंद्र कपूर ते लता मंगेशकर दा गाया हुआ गीत, फिल्म है किकली।

0: सदा रेशम वर्गा दिल हाय सदा रेशम वर्गा दिल गोरिये हाय सोनिये होए मोनिये ओले हो के मिल वो काली गुट चपरांदा लाल
1: महेंद्र कपूर ते लता मंगेशकर दा गाया हुआ गीत सी फिल्म सी किकली। ए सी प्रोग्राम महक पंजाब दी। ए प्रोग्राम असी हर रोज़ लेके आने हैं। इस दा समा हुंदा है सवेरे 8:40 और अज शाम 4:02 दे मुख खबरां तो बाद पंजाबी फिल्मां तो गीत सुनवाए जाणगे। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से इस समय सवेर के 9 बजे ने पेश ने मुख खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नवी दिल्ली विखे प्रगति की 52वीं मीटिंग की प्रधानगी की। पंजाब अज तो वोटर सूचियां दे महीना पर चलण वाली विशेष ज्ञान सोत सर शुरू करेगा और यह मुहिम 24 जुलाई तक जारी रहेगी। उत्तराखंड विच पिथौरागढ़ जिले के लिप लेख दरे राही 6 साल बाद भारत चीन सरहदी व्यापार मुड़ शुरू हो जा रहा है। 26 भारतीय व्यापारियों का दल पहला दल कल तिब्बत के खेत्र विच दाखल होगा। भारत की राष्ट्रीय शाहराह अथॉरिटी ने राष्ट्रीय शाहराह ते नाजायज कब्जियां ते अण अधिकृत पार्किंग विरुद्ध कार्रवाई तेज की। केंद्रीय रेल राज मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने जलंधर विच क्रॉसिंग गुरु नानकपुरा ते बस स्टैंड तो गढ़ा रोड मुख रेलवे फाटकों ते बनाए जाने वाले ओवरब्रिजों का नींह पत्थर रख्या ते इन्हां ते करीब 113 करोड़ रुपए की लागत आवेगी। केंद्र सरकार ने पुष्टि की कि सावणी रुत 2026 पंजाब विच यूरिया ते डीएपी खाद की लोड़ी मात्रा उपलब्ध है। पंजाब ऑब्जर्वेशन होम्स से स्पैशल होम्स विच रह रहे बच्चों लई हुनर विकास प्रोग्राम की शुरुआत करने वाला देश का पहला सूबा बनिया। पंजाब सरकार वालों मोहाली विखे NRI मिलनी 2026 का आयोजन। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर ते वार मुहिम तहत जनवरी तो हुण तक गैंगस्टर विरोधी कार्ज बल ने सूबे भर विचों गोली सिक्के समेत 713 गैर कानूनी हथियार जब्त किए ते मौसम विभाग ने बल्कि 26 जून तक पंजाब हरियाणा अते चंडीगढ़ विच कुछ थावां ते गरज चमक दे नाल हल्की तो दरमियानी बारिश बारे येलो अलर्ट जारी किया।

करिश्मा कपूर की गल कर रहे हैं तो करिश्मा कपूर ने अपना सफ़र सन 1991 तो शुरू किया और फिल्म आई प्रेम क्या थी। इस तो बाद बहुत सारी फिल्म आई, पुलिस ऑफिसर, चाकरी थी।

वैसे देखिया जावे तो करिश्मा कपूर ने 1999 की फिल्म हम साथ साथ हैं विच काम किया, एक होर सफलता प्राप्त की थी। इस विच काम करके सूरज परजातिया है इस फिल्म के डायरेक्टर सन, और इस अलावा फिल्म फिजा आई, फिर उस तो बाद आई फिल्म जुबैदा। जुबैदा विच इस फिल्म लई फिल्मफेयर जड़ा है इन्हां नूं पुरस्कार नाल नवाजा गया। सो करिश्मा कपूर ने बहुत सारिया फिल्मों विच काम किया है, और जिमें कि असी दस्या कि 1990 की बेहतरीन कमाई करने वाली रही अदाकारा करिश्मा कपूर, जिस विच कि इन्होंने बहुत सारिया फिल्मों विच अदा करन दे नाल एक नाम भी कमाया है।

जीत होगी, बाल ब्रह्मचारी हुई, सपूत हुई फिल्म, रक्षक हुई, और इस अलावा कई होर फिल्म आई। और इस तरह ये जड़ा सफ़र है जारी रहा, विच ब्रेक भी लिया, और इस तो बाद कुछ होर भी फिल्मों अदाकारी की थी करिश्मा कपूर ने।

0: is mobile number? What is your smile number?
1: What is your style number? Karo kya dial number?
2: So, mehnat ta karni pendi hai raat raat kuch nahi milda kisi nu chahe kinna bhi koi नामी ग्रामी फिल्मी हस्ती का कोई बच्चा होवे या कोई होर होवे। गल इस तरह कि इसी तरह करिश्मा कपूर ने सिर्फ 16 और 17 दरमियान फिल्मों में कैरियर शुरू किया। और करिश्मा कपूर का कहना कि जब इंडस्ट्री में आए सन तो सबनों ही लगता सी कि स्टार किड है और इस तरह कोई मानता नहीं सी दी जाती। बहुत सारे स्टार किड्स आए सन और बहुत सारे जड़े स्टार किड्स सन उस समय सफल नहीं सी हो पाए। इस कारण बहुत सारे निर्देशकों ने कहना शुरू कर दिता सी कि नहीं ये तो फिर थोड़े दिन की गल है। पर करिश्मा कपूर ने हार नहीं मनी। बहुत ज़्यादा जड़ा है कंट्रोवर्सी भी सहनी पई है, बहुत ज़्यादा आलोचनात्मक पहलू भी इन्हों सहने पे ने, पर अपना संघर्ष

अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई, लगन कदे नहीं छोड़ी। क्योंकि करिश्मा कपूर का कहना सी कि यह है कि संघर्ष ही इंसान अगे लेके जाता है। तो जो भी मैं फिल्म विच काम किया सी पहली बार तो किसी ने कोई मानता नहीं सी दित्ती, बस ये कहा जाता सी कि हाँ ठीक है, उसने चंगा ही काम किया है। कुछ इस तरह दल्ला सहनिया पईया सन। और करिश्मा कपूर ने सोच लिया सी कि मैं ही एक अदाकारा, बेहतरीन अदाकारा बन के दिखावांगी। और फिल्मों में चलो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, फिल्मों में जड़ा है फिल्म फेयर पुरस्कार नाल नवाजा गया है करिश्मा कपूर नू, जिमें कि फिल्म जुबैद आई। और उन्होंने हजे लगता सी कि एक होर संजीदा रोल करना है, तो वो हाथ आई करिश्मा कपूर ते जुबैदा।

राजा हिंदुस्तानी फिल्म लई जवाई सी धर्मेश दर्शन दी सी तां उस फिल्म लई करिश्मा ने काफ़ी मेहनत करके उस नूं एक जड़ा है मानता मिली राजा हिंदुस्तानी फिल्म कारण और फिल्मफेयर पुरस्कार नाल भी नवाजे गए और साल दी उस साल दी सब तो हिट फिल्म रही सी और इस फिल्म ने राजा हिंदुस्तानी ने तकरीबन 765 मिलियन का जड़ा सी बिजनेस किया से तो इस तरह जदों फिल्म ज़ुबैदा आई तो वो भी इन्हों फिल्मफेयर पुरस्कार नाल सम्मानित किया गया।

0: सो हर पल खुशी दबीते हंस यही आस करते हैं। और करिश्मा कपूर दा सफर हजे जारी है, बहुत सारी वैब सीरीज विच नज़र आते ने। फिजा शिकारी, जुबैदा आशिक, एक रिश्ता हाँ मैंने भी प्यार किया, शक्ति रिश्ते, बास मेरे जीवन साथी, जमानत, बॉडीगार्ड, डेंजरस, इश्क, योजना फिल्मों में उन्होंने बहुत काम किया है। सो ये सी आज एक कलाकार करिश्मा कपूर ते सी। और हुन छोटे जे ब्रेक तो बाद असी लेके आवांगे गज़लां दी महफिल, सुनांगे गज़लां। तुसी जुड़े हो आकाशवाणी जलंधर नाल। और इस समय समा है ब्रेक दा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल

AC, Dilraj Kaur Diwaz vich ghazal. दिल से चाहे तो भुला ना पाए, याद आती रही मगर भुला ना पाए। काश बुला पाते, काश आवाज़ दे पाते। हसरत है दिल में,

प्यार है फिर जुदाई भी है, और दिल करता है तो फिर एक आवाज़ तो देनी ही पैनी है। तुसी गजलां सुन रहे हो आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो। दर्द की दास्तां सुनो तो सही, क्या है कहानी सुनो तो सही, मेरी जुबान से मेरी दास्तां सुनो तो।

दिन रात की उलझन है ये, सुलगते अस्सास जज्बात किसे पेश करूं। लता मंगेशकर दी गाई हुई ये गज़ल सी, और इस गज़ल दे नाल ही गज़लां दी महफिल दा ये सिलसिला हुण इत्थे ही ख़त्म हुंदा है। असीं तुहानूं दस्सीए कि गज़लां दा ये सिलसिला सी हुण रोज़ लै के आउंदे हां। इस दा समां हुंदा है सवेरे 9:30 बजे।

0: प्रोग्राम है। हेलो फरमाइश। हेलो
1: प्यार ते सतिकार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। कौन बोल रहे हो?
1: सोम दत्त बोलदा जी, मैं इस गेट नाभे तो जी।
0: हाँ जी सोमदत्त जी, की हाल चाल ने?
1: बहुत वधिया भैन जी, हाल चाल, तुसी सुनाओ ठीक हो जी?
0: बहुत वधिया। गीत दस्यो, केड़ा सुनना चाहंदे हो? अजय
1: हकीकत
0: सर
1: मूवी
0: फिर
1: का गीत सुनांगे जी अज।
0: ठीक है, बहुत बहुत
1: 1954 दे विच आई थी कर चले हम फिदा।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए।

प्रोग्राम है हेलो फरमाइश, और साडा नंबर है 2342173 यानी 2342173, और एरिया कोड है जलंधर दा 0181 यानी 0181। तो तुसी अपनी फरमाइश दा गीत सुन सकते हो फोन करके, बस फोन करना पैना। तो देखते हैं जी कौन जुड़े ने। हेलो हेलो, लो जी लगता कि इन्होंने कितने फोन कॉल कट्टी गई है। आप देखते हैं कि साढ़े नाल कौन जुड़ते हैं। सो असी वार वार अपना नंबर दसते हैं कि जोड़े साढ़े सुनने वाले ने सानू फोन कर सकन और अपनी फरमाइश का गीत सुन सकन। तो देखते हैं कौन जुड़े ने। हेलो हेलो, नहीं फिलहाल तो फोन नहीं मिल रहा है। चलो कोई गल नहीं, आप जोड़े कॉलर आए सन वो सुनना चाहते सन फिल्म नौकर बीवी का दा गीत। ते सुनते हैं गीत, फिल्म है नौकर बीवी का।

0: वैसे ने इसे गल विच पलाई है, आप सारी जान रहे हैं। चलो जी देखते हैं कौन जुड़े ने साडे नाल। हैलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोलते हो?
1: रामकृष्ण प्रजापति लहरा गागा संगरूर डिस्ट्रिक्ट जी।
0: हाँ जी, की हाल चाल ने?
1: ठीक ठाक मैडम जी, बहुत वधिया, मालक दी कृपा
0: वधिया।
1: जी।
0: ते
1: प्रभु हाँ जी,
0: गीता
1: हाँ जी।
0: दस्यो लग दे हाथ, केड़ा सुनना चाहते हो?
1: लावारिस फिल्म दा किशोर कुमार दा गाया होया जी।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लिए।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे हो?
1: जी गुरमुख बोल रहा शाहकोट तो मैम,
0: की हाल
1: अदलिया
0: चाल
1: कला।
0: है गुरमत जी?
1: बहुत बढ़िया मैम जी। हाँ दोस्तों
0: की कर दे हो तुसी?
1: मैम, आपका दृष्टिहीन है कि बस रेडियो के नाल ही नाल।
0: चलो वधिया, रेडियो नाल जुड़े रहो, सुनते रहो गीत ते संगीत और बहुत सारे प्रोग्राम ही ते। गीत केड़ा सुनना आज दे इस हेलो फरमाइश विच?
1: वो दंगाना सुनना चाहता भतीजे दोनों।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लगी।

0: तेरा शीशे का सामान मैंने तोड़ा मेरी जान तो क्या हुआ।
1: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश 2342173 है साडा नंबर। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार मैडम जी, सत श्रीकाल।
1: सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। लगता है सत श्रीकाल करना सीख लिया है।
2: हमें तो आता है क्योंकि पंजाबी भाषा मुझे पसंद ही है बचपन से।
1: अच्छा ठीक है।
2: और तो आपकी क्या हालचाल?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग फोन करते अपने आप ही बढ़िया हो जाता है।
2: अच्छा, और बारिश है कि नहीं आपके पंजाब में?
1: हो जाएगी, कोई बात नहीं।
2: चलो हम भेज रहे हैं, हमारे यहाँ कल हो चुकी है स्टार्टिंग।
1: अच्छा चलिए, यहाँ भी बना तो है पर देखो कब होती है, चलते चलते रुक जाती है।
2: हाँ सही बात है, चलते चलती हूँ रुक जाता हूँ मैं।
1: रुक जाता हूँ मैं, ठीक है ना। आसार होते हैं बारिश के, फिर वहीं बारिश कहती है नहीं अभी नहीं मैं आऊंगी, अभी और रुको। उसके भी नखरे हैं अपने।
2: वैसे आपको एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ मतलब मध्य प्रदेश में ऐसा सिस्टम है, अगर बारिश नहीं आती ना
1: फिर?
2: तो सब लोग मतलब घर से बाहर खाना बनाने अगर जाते हैं,
1: अच्छा
2: खेत पे या फिर कहीं भी मतलब, तो पक्का बारिश आती है। ऐसा है ही सही, अगर नहीं आ रही नहीं आ रही काफी दिन हो गए ना, तो घर में कोई खाना नहीं बनाते। मतलब चाहे वो होटल पे जाए या फिर जिनके यहाँ खेत खेत वगैरह है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ दाल बाटी कुछ भी बना के खाते हैं, पक्का बारिश आती है।
1: अच्छा ये मान्यता है या यूं ही लोग जाते हैं कि बना हुआ ट्रेडिशन?
2: मैं भी ट्रस्ट करती हूँ, पहले नहीं करती थी लेकिन ऐसा हुआ है तो करती हूँ।
1: अच्छा चलिए ठीक है, विश्वास बना रहे। और अब गीत बताएं कौन सा सुनना चाहेंगे?
2: मूवी का नाम है चल मेरे भाई और गाने के बोले वो मेहंदी रंग लाई।
1: चलो जी लाएगी बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
2: धन्यवाद।
1: बताली 173 करनी है फरमाइश, कॉल कर सकते हो इस नंबर पे।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ब्रेक तो बाद ऐसी हाजिर हूँ, प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार जी, सुखबीर जी की हाल है?
4: ठीक ठाक, मैं तुम्हें और ठीक ठाक हूँ जी।
3: बहुत वधिया,
4: वाह जी वाह, बहुत वधिया प्रोग्राम पेश कर रहे हैं जी।
3: बहुत बहुत धन्यवाद, की दस हुन केड़ा सुनना फटाफट?
4: देसी बॉयज दा ला दे जी, नेक्स्ट सम नॉइस फॉर द देसी बॉयज।
3: ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश, तुसी सानू फोन कर सकते हो। साडा नंबर है 2342173 यानी 2342173, एरिया कोड है जलंधर दा 0181 यानी 0181। हेलो
1: मैडम जी, प्यार प्री, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, कौन बोलदे हो?
1: सुखदेव सिंह बोल रहे जी, बस्ती शेख जनक नगर जलंधर वालों। सारे सुनने वाले श्रोतिया नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ते मैडम जी, बहुत वधिया तुसीं प्रोग्राम कर रहे हो, तुहाडा अंदाज बहुत प्यारा। परमात्मा तुहानूं चढ़दी कला विच रखे जी।
0: चलो जी, सारे ही चढ़दी कला विच रहन और परमात्मा दा हाथ सारयां ते रहे, असीं इही दुआ करदे आं। गीत दस दिओ।
1: गीत है जी नील कमल दा, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुख की संसार मिले।
0: बिल्कुल जी, हर माँ बाप दी यही दुआ हुंदी है और यही रहनी चाहिदी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद फोन करन लई। तुसीं वी सानूं कॉल कर सकदे हो। साडा नंबर है 2342173।

0: बोल रहे हो?
1: नहीं, मैं सीताराम बोल रहा हूँ, जलंधर मॉडल टाउन से जी।
0: की हाल चाल ने सीताराम जी?
1: बढ़िया मैडम जी। हाँ
0: बढ़िया। गीत दसते हो?
1: मैडम जी, मैं खिलाड़ी कलंदर गाना सुनना है, वादा राग सुनूंगी
0: ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी।
0: कॉल करने लई।

0: प्रोग्राम है हेलो फरमाइश। हेलो,
1: मैम जगतार
0: सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, कौन बोल रहे हो?
1: सिंह गिल जी, पिंड भंगाला जी, जिला फाजिलका, तहसील अबोहर बोलता मैम। हाँ
0: चिट्ठी पहुंच जाएगी?
1: जी हाँ जी हाँ
0: की
1: जी
0: दस दे, केड़ा सुनना हूं फटाफट।
1: नहीं ना फिर जो मर्जी सुना मैम सारी
0: जी
1: सुने इन्होंने।
0: ठीक है जी, धन्यवाद फोन करने लिए।

0: सो जी जे प्यार है फिर उसने मनाना तो है ही है। आप देखते हैं
1: तो
0: कौन जुड़े ने। हेलो
1: हेलो। हाँ जी मैडम जी, सत
0: सत
1: श्रीकाल।
0: श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, कौन बोल रहे हो? पहली
1: मैं कुलजिंदर सिंह बोल रहा हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैनेजर
0: बार
1: बोल
0: गल
1: रहा
0: कर
1: हूँ
0: रहे हो
1: यार।
0: तुसी?
1: हाँ जी, पहले भी फोन लगा जी, मेरा बहुत टाइम मैं ट्राई करता रहा है।
0: चलो मिलता गया ना।
1: हाँ
0: चलो वधिया दिन बन गया आज, है फोन कॉल लग गए।
1: जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया बन गया।
0: गीत दसते हो?
1: हाँ जी, तो सन्यासी पिक्चर का सुना दो मैडम जी,
0: कोई भी
1: कोई भी सुना
0: ठीक है जी, धन्यवाद।
1: दो। ओके।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हो?
1: मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ, बलेड कोटने का।
0: हाँ जी, की हाल चाल ने?
1: बहुत बढ़िया, तुम सुनाओ।
0: बहुत बढ़िया, गीत दसते हो?
1: मैं खूब जी, मैं भी क्या सुना रही हूँ जी।
0: ठीक है, कोशिश करने सुनावा। बहुत बहुत धन्यवाद फोन कर ली।

0: मोहब्बत प्यार चाहे जिस तरह दी होवे है बड़ा खूबसूरत, कड़वा हो चाहे मिठा। एसी प्रोग्राम हैलो फरमाइश, असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे ठीक 11 बजे ने सुन रहे हैं समाचार हिंदी विच।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। आव्रजन संबंधी औपचारिकताएं भी प्रस्थान बिंदु पर ही पूरी कर ली जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया है। इस बीच कई जगहों पर बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया

0: उसमें श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 400 अंक की उछाल से 77,391 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक से अधिक की वृद्धि के साथ 24,125 के आसपास कारोबार कर रहा था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। इससे पहले आज मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने ग्रुप के सभी तीनों मैच जीत लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

प्रोग्राम चल रहा जी धमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया जी बागपत उत्तर प्रदेश तो संजय ढींगिया नमन ढींगिया ते अपार ढींगिया दा अगले साथी ने पिंड कबूल शाह खुब्बन जिला फाजिलका तो वधावा सिंह बलकरन तनु पवी जस्सी पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा ते भूमिका अरोड़ा गांव ढांडी तो लाल खां जावेद खां अरमान खां इमरान खां सीमा बानो विनोद खां सोहेल खां जुनेद खां ते अगले साथी ने पिंड कुड़ियाना जिला फाजिलका तो मलकीत सिंह कुड़ियाना मनजोत कौर बठिंडा तो दीपिंदर सिंह गुरबख्श सिंह जीत सिंह कुड़ियाना दर्शन सिंह सुखदेव सिंह चैल बुरज हनुमानगढ़ तो ते कुलवंत गिल मलोड़ तो अगले साथी ने कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टिया बलिया तो ओम प्रकाश राय श्रीमती उषा राय अमित कुमार राय हैप्पी राय दुबीहा नेवादा जिला गाजीपुर तो प्रतीक रॉय रोशनी रॉय ते प्रांजल रॉय अगले साथी ने पिंड नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो वेद मिड्डा अलका मिड्डा पिंड नथाना बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल भाटिया नवनीत भाटिया पप्पी भाटिया ते सोनू भाटिया तेलंगाना भोंगिर तो मोहम्मद बुराहुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समीरा आजमीन आदर्श नगर मलोड़ पंजाब तो राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा साइना ते निवान शर्मा अगले साथी ने मलोड़ तो कुलवंत गिल जसवंत गिल रमन गिल बलजीत गिल कैनेडा तो दिशा मोहला जगदार जग्गा तोला किंगरा तो सूबेदार साधु सिंह पट्टी पिंड बसौली वाला आरव पट्टी शकीला पट्टी कुलवंत टीनू पट्टी बसौली वाला तो अगले साथी ने कनेरा मोहल्ला पटियाला तो मुकेश भट्टा नीलम भट्टा नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक ते वंश भट्टा अगला मैसेज आया जी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान तो रजाक मोहम्मद समीम बेगम इमरान खान ते इरफान खान दा अगले साथी ने पटेल नगर मलोड़ तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया गीता रानी जजोरिया गगनदीप आरजू जजोरिया ते गुड्डू अगले साथी ने बीड शहर महाराष्ट्र तो नंद किशोर घटे संगीता घटे साक्षी घटे अंजलि करवा बाला साहेब करवा राम निवास अग्रवाल धनंजय टवूल पीबी कुलथे अगला मैसेज आया जी सुखदेव कले नरेश कले संतोष रानी पूजा रानी पुनीत निगा शुभदीप कलेरदा बलाचौर तो अगला मैसेज लिख देने कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा तो रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकिरत गुरशब्द सिंह राहुल जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तानवी लक्ष्य सोनी मोहिनी ऋतिक बलवीर सिंह ते अगले साथी ने बुल्डाना वणशिंगी महाराष्ट्र तो अमोल मानकर शोभाताई मानकर दीपाली ते श्लोक कुमार बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र तो सहदेव दामोदर शशिकला दामोदर सुमेत कुमार रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा

सोमनाथ कालिया, वड़ेंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा, पिंड शाहपुर महतपुर तो बूटा सिंह विजयपाल सिंह अजयपाल सिंह पाहुल जोत सिंह अनहत कौर लवप्रीत कौर ते परविंदर कौर, दादा बाबू रोड गिरीहीट झारखंड तो मोहम्मद यासीन अंजान साइमा नवाज हसन नवाज बाबू अहत मिर्फा नवाज बेबी चाहत, पिंड फरवाही जिला संगरूर तो राजू अंसारी बाबू अंसारी पिल्लू अंसारी लाली अंसारी शौकी अंसारी, मनदीप सिंह दीपा बस स्टैंड जलाल दीवाल जिला लुधियाना तो। अगला मैसेज है जी, पिंड वड़िंगखेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहिब तो भोला सिंह सिद्धू पूरा सिंह गहलोत वकील सिंह चाहल, पिंड संतपुरा राजस्थान तो टेक सिंह सिद्धू पिंड लैपो गहरी तो गुरमीत सिंह ते पिंड बजीतपुर पोमा तो बलजीत सिंह। अगले साथी ने मोहाली चंडीगढ़ तो टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। आओ फिर एना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर है जी हंस राज हंस दी आवाज़ विच।

सारिमपुर बक्सर तों राज एस डी अंसारी ते आसमा खातून अंसारी। अलीका तहसील डब्बाली तो लिखते ने रूप सिंह लखोत्री, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू ते रजनी। पिंड सावनखेड़ा नेड़े मंडी डब्बाली तो कृष्ण लाल, मिश्री देवी, सिमरी देवी, मनोज कुमार, पुष्पा रानी, शैलेंद्र कुमार। लेवाई छत्तीसगढ़ तो गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी ते रानी मानिकपुरी। ते अगले साथी ने करनीखेड़ा फाजिलका तो गुरदीप सिंह कटवाल, मीतोबाई, सुखचैन रानो, परवीन नवीन, अनमोल बूटा, मनीता, नवदीप, खुशदीप, निर्मल, परमजीत, गुरसेवक, गुरबख्श, साहिबा ते मिर्जा। ते अगले साथी ने पिंड इस्लाम वाला ज़िला फाजिलका, इथों लिख देने जी सोहन लाल राठी, ओम प्रकाश राठी, शगुन राठी, लवकुश वर्मा, छतरपाल सिंह खंगूरा, रजिंदर सिंह खंगूरा, बाबू सिंह महनेवाला, काका बट्टी, पिंड कमालवाला तो गुरमै सिंह विरक। मलोट कैंप तो लिखते ने सतीश मिगलानी, सीमा मिगलानी, अनमोल मिगलानी, महावीर संधु। ते अगले साथी ने विजय तंवर ते ममता मुंडी खरड़ तो। ऊपर कोट मोहल्ला चौघंटी बुलंदशहर तो लिखते ने मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान अब्बासी। आओ फिर एना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर कर दिया, बलकार सिद्धू दा गाया होया।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: ते सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

प्रोग्राम चल रहा है जी, धमक जलंधर पैंदी। ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया जी, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर तो सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम अते अदिबदा। ते अगले साथी ने यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र तो संतोष खड़से ते विनोद खड़से, भोपालगढ़ राजस्थान तो धर्मेंद्र छीमा, कपिल छीपा, ईशान छीपा ते पूजा परिहार, पिंड बिल्लीमार तो प्रेम कुमार, परवीन रानी, अलीसा अरमान, राकेश कुमार ते ममता रानी। अगले साथी ने टानीनाथा सिंह जंडवाला, भीमेशा सुखचरण सिंह, केवल सिंह, मनदीप सिंह, गुरनूर सिंह, वरिंदर सिंह, चरतवीर सिंह ते अमानत कौर, खैल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविका सिक्का। अगले साथी ने दादा असवानी गोयल बजितपुर कटियावाली फजिलका तो, विजय गोयल बजितपुर कटियावाली तो, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण संस्कृति ते पौरुष वाइटफील्ड बेंगलुरु तो। अगला मैसेज आया जी, पिंड संदोहा नेड़े मोड़ मंडी तो जगराज सिंह, कणकवालिया, गंगाराम, मोहन लाल, राजेश्वर, सोनू, अरविंद कुमार, लाडी तालीवाल, समाना दा। अगले साथी ने पिंड धमोड़ जिला लुधियाना तो बूटा बिंदर सिंह धालीवाला, प्रगट सिंह धालीवाल, रवि भारसो, पिंड हीरा वाली फाजिलका तो सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा। अगले साथी ने पिंड चांदमरी तो मंगत राम, जगदीश रानी, संदीप मिद्दा, ममता रानी, अभिषेक मिद्दा ते दिव्या।

0: हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार। प्रोग्राम वसदे वेले सुनने वाले सारे श्रोतियां नूं कोमल वल्लों प्यार भरी नमस्कार।
0: जी कोमल जी, तुहानूं वी नमस्कार ते सारे सुनने वाले सारे श्रोतियां नूं पूनम वल्लों भी प्यार भरी नमस्कार। की हाल चाल ने कोमल जी?
1: बिल्कुल ठीक ने जी। और जदों असीं इत्थे आंदे आ ना, भैणां नाल जदों रूबरू होंदे आ ते इंज लगदा है कि अपने परिवार च आ गया।
0: बिल्कुल जी। वैसे तुसी परिवार च वापस आउण दी गल कीती है ना, मैनूं इक गल याद आ गई है
1: जी
0: कि अज हो गई है देखो 25 तारीख, छुट्टियां पूरी तरह हुण खत्म होण दे नेड़े आ चुकियां ने। ते
1: बिल्कुल
0: जेड़े भी बच्चे, जेड़े भी लोग किते नानके गए ने, मासी दे घर गए ने या घूमण गए ने, ओह भी वापस अपने घर परत गए होणे आ।
1: बिल्कुल तुहाडी गल सही है। ते बच्चियां ते ना फिर एक टेंशन जी शुरू हो गई है कि मेरा ते हाले होमवर्क भी नहीं पूरा होया ते छुट्टियां खत्म होने वाली है, हुन मैं की करा। मतलब भजना पईया हुई है बच्चियां नूं ना, डर लग्या होया
0: ते
1: है।
0: कुछ होशियार बच्चे इहो जिहे भी होणगे जिन्हां ने पहलां अपना होमवर्क पूरा कीता होएगा, ते जिथे भी गए होणगे नाल अपने किताबां जरूर लैके गए होणगे।
1: जी बिल्कुल सही गल है, क्योंकि की है कि ये एक हिस्सा है छुट्टियां दा कि
0: जी
1: जड़ा है होमवर्क है वो पूरा करना है, फिर आपां जावांगे मैम ने चेक करना है, और फिर एग्जाम भी होंदे ने जांदे ही। ते हुण मैनूं लगदा है कि दोबारा तो पढ़ाई नूं ना एक तर्हां दा रिमाइंड कर लिता जाए आपां की कुछ करना सी और अगों की कुछ टेस्ट होना है, ताकि छुट्टियां तो बाद कोई दिक्कत ना आवे, है
0: देखो
1: ना।
0: अज कल जिहड़े स्मार्ट स्कूल्स ने या फिर एजुकेशन सिस्टम दे विच बहुत सारे सुधार आ रहे ने, उहदे विच अज कल इहो जिहा होमवर्क भी कीता जा रहा जिहड़ा कि प्रैक्टिकल होवे।
1: बिल्कुल
0: जिस तरह कि मैं एक दिन खबर पढ़ रही सी, उहदे विच इह लिखिआ सीगा कि स्कूलां दे विच जो छुट्टियां दे विच काम जिहड़ा दित्ता जाणा, उस दे विच इह वी शामिल है कि तुसीं बागबानी करनी है, पौद्यां दी देखभाल किवें करनी है, या फिर छुट्टियां दे विच तुसीं की रचनात्मक काम कीता उस दी तुसीं आण के रिपोर्ट देनी है। मतलब कि
1: बिल्कुल
0: किताबां तों बाहर वी जो तुसीं ज्ञान हासिल करदे हो अपने फ्री समय दे विच, ओह भी बच्चों दे इक जिंदगी दा बहुत जरूरी सिख्या दा हिस्सा होना चाहिदा है।
1: ते नाल नाल ना बच्चियां नूं की हुंदे जिहड़ा उहनां दा सिलेबस है उहदे नाल जुड़े होए कई तरहां दे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दित्ते जांदे ने
0: जी
1: कि तुसीं इह छुट्टियां च पूरे करके आने ने। कई वारी कोई जगह सुजेस्ट कीतियां जांदियां ने कि इत्थे तुसीं घूम के आओ ते नाले उहदी रिपोर्ट बना के दसो वी
0: जी
1: उत्थे तुसीं की कुछ देखिया, किवें गए, और जिथे जिथे भी गए उत्थे सारी दी डिटेल जिहड़ी उह दसो। इहदे नाल बच्चे दी कम्युनिकेशन, उहदा लिखण दा तरीका, उहदी नॉलेज सारा कुछ वधदा है वो।
0: बिल्कुल जी। नाल नाल इस चीज़ ते भी हमेशा इंप्रूवमेंट हुंदी है कि बच्चे दा चीज़ां नू देखण दा नज़रिया, चीज़ां नू
1: जी
0: महसूस करन दा नज़रिया ओह भी इंप्रूव हुंदा है।
1: बिल्कुल
0: ते मैनू देखो अखां अगे तस्वीर आ गई है कि जदों टीचर्स बच्चियां नू ये सारियां गल्लां पुछ रहे होणगे तां किन्नियां प्यारियां प्यारियां कहानियां निकल के सामने आउंदियां
1: बिल्कुल
0: होणगियां।
1: सही गल है। हर बच्चे दी अपनी क्रिएटिविटी है और अपनी एक दुनिया है, और
0: जी
1: उस दुनिया दे हिसाब नाल वो किवें दी स्टोरी जिहड़ी है वो बनांदा है, और किवें दी कहानियां वो सुनांदा है, और की लिख के लिआंदा है। ये पढ़ना और ये चेक करना ना एक अलग ही एक्सपीरियंस हुंदा होएगा।
0: बिल्कुल तुसीं सही कहा। सो हुण तुसीं कहा सीगा कि भाजड़ा पईआं होणियां, वाकई घरां दे विच तैयारी शुरू हो गई होणी है कि हुण स्कूल
1: बिल्कुल
0: शुरू होण वाले ने, बच्चियां नूं जिहड़ा बच्चियां ने होमवर्क नहीं कीता उहनां नूं कंप्लीट कराया जावे, बच्चियां नूं थोड़ा जिहा फिर इस रूटीन दे विच वल लिआंदा जावे कि ओह अपनी टाइम टेबल सैट करन, जल्दी सौण, जल्दी उठण,
1: बिल्कुल
0: ते स्कूल दे लई ओह तैयार हो सकण। ते एक चाहिदा भी है इहो जिहा माहौल, क्योंकि अचानक असीं छुट्टियां दे माहौल तों जदों वापस स्कूल वल जांदे ना तां बच्चियां दे लई वी मुश्किल हो जांदा है।
1: बहुत मुश्किल हो जाती है। जदों छुट्टियां तो बाद फर्स्ट डे स्कूल जाना है ना, किसी का भी खुशी खुशी मन नहीं करता जानते, और
0: जी
1: दिल करता है कि अन्य दिन छुट्टियां बिता लिया हूँ किवें जाइए। और बच्चियां की गल नहीं है पूनम, जदों कोई भी किधरे भी अपनी जॉब करता है ना, अगर इन सारिया छुट्टियां तो बाद जाना हो तो हर एक थोड़ा जहा औखा

0: लगता है 2-4 दिन, फिर नॉर्मल रूटीन आ जाती
1: मैनूं पूरी तरह इस गल ते यकीन है कि कुछ बच्चे इहो जिहे भी हुंदे होणगे जिन्हां नूं बड़ा चाह
0: है।
1: हुंदा होएगा
0: हाँ
1: कि
0: भाई हुण
1: छुट्टियां तों
0: आपां
1: बाद
0: फिर
1: असीं आपणे
0: जावांगे।
1: दोस्तां नूं मिलांगे, स्कूल जावांगे, यूनिफॉर्म पा के जावांगे, ते इक अजिहा चाह भी हुंदा है बच्चें दे मन च।
0: बिल्कुल। ते नाले उन्हां नूं ना तांग हुंदी है कि आपां अपने दोस्तां नूं मिलांगे जाके, ते जिवें
1: जी
0: नाल मिलांगे। और कई ते अपने टीचर्स नूं मिलण लई बड़े बेचैन हुंदे ने, भी टीचर नूं मिले होए भी इन्नी देर हो गई आ, हुण असीं देखांगे मैडम की कराउंदे आ, है ना।
1: फेवरेट टीचर्स
0: बिल्कुल।
1: जी। ते देखो साडे वल्लों तां शुभेच्छावां ने उह सारे बच्चिआं नूं जिहड़े दुबारा स्कूल वल मुड़नगे कुछ दिनां बाद,
0: बिल्कुल।
1: ते छुट्टियां दा उम्मीद है उहनां ने आनंद माणिआ होएगा। ते साडीआं भैणां जिहड़ीआं लगातार घर दे विच कामकाज दे विच रुझीआं रहिंदीआं ने, जिन्हां नूं कोई छुट्टी भी नहीं हुंदी कई वार,
0: हाँ
1: उहनां दे आनंद दी ख्याल रखदे होइआं असीं प्रोग्राम लै के आउंदे हाँ, वक्ख वक्ख चेष्टे लै के आउंदे हाँ, गीत संगीत लै के आउंदे हाँ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ,
0: ਬਿਲਕੁਲ।
1: ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज

0: गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताज़ा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश है साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समां।

बाद दोपहर 2:30 ते आनंद माना गुरदेव एस मल्लन ढाडी ते उना दे साथियां ते गाए लोक गीतां दा प्रोग्राम रंगली धरती च।

शाम 6:30 बजे आईसीसी वोमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 तहत अज तुसी भारत अते बंगलादेश दरमियान खेडे जान वाले मैच दा अखी वेख्या हाल सुनोगे आकाशवाणी जलंधर केंद्र तो ते बाकी दे प्रोग्राम सुन सकोगे साड़ी मोबाइल ऐप ते। शाम 6:30 बजे दा समा रहेगा देहाती प्रोग्राम दा। अज इस विच तुसी सिंचाई ते पीण वाले पानी दी परख संबंधी डॉक्टर शिवानी गुलेरिया तो जानकारी हासिल कर सकोगे।

फौजी वीरो जय हिंद, मैं निधि चुग लैके हाजिर हाँ जी तुहाडे लई फिल्मी गीतां दा ए प्रोग्राम। ते इस प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां फिल्म साजन दे एक गीत दे नाल। इस गीत नूं आवाज़ दित्ती है SP बाला सुब्रमण्यम ने।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। नायब सदर, वजीर आजम और वजीर दाखला ने उन सभी को खराज अकीदत पेश किया है जिन

उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अख्तियार का दिफा किया। वजीर खारजा डॉक्टर एच जयशंकर ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत बैन अल-अक़वामी इश्तराक पर जोर दिया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल जामे इक्तसादी और तजारती माहदे के निफाज से पहले बरतानिया का 3 रोजा दौरा करेंगे। भारत ने तवानाई के शोबे में मजीद ब्रिक्स शराकतदारी पर जोर दिया है। वेनेजुएला में ताकतवर जलजलों में 32 अफराद हलाक और 700 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। वेनेजुएला की सदर ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। और फीफा आलमी कप में मोंटेरे में जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर पहली मर्तबा नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। यह हर उस शख्स को

0: अब खबरें तफसील से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। यह हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खल्फिशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरतेहाल के सबब किया गया था, क्योंकि उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत पर सवाल उठ रहे थे। इसके नतीजे में आमला ने मुकम्मल इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे और सरकारी अथॉरिटी पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इसके बाद मुख्तलिफ आईनी तहफ़ुज़ात मुअत्तल कर दिए गए थे। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजुई करने के हक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिज कर दी गई थी, यहां तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था जो प्रेस की आज़ादी की तहफ़ का एक कानूनी इदारा है। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उन सभी को खराज अकीदत पेश किया है जो इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अकदार के दिफा में साबित कदम रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी इमरजेंसी के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इमरजेंसी आईन पर एक बराह रास्त हमला था। उन्होंने कहा कि उस अरसे में सिविल आज़ादियों को मुअत्तल कर दिया गया था, इजहार राय की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया था और सियासी रहनुमाओं, सहाफ़ियों और समाजी कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरजेंसी ने उन बेशुमार शहरियों के गैरमामूली हौसले को भी उजागर किया था जिन्होंने खामोश रहने से इनकार किया था और वो आईन में दर्ज नज़रियात की खातिर डटे रहे। जनाब मोदी ने कहा कि आईन 140 करोड़ भारतीयों की उमंगों, हुकूक और फराइज को बयान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे के उसूलों के तहफ़ की खातिर मुसलसल अहद बस्ता है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाए जाने का मकसद इस स्याह बाब की मुल्क की यादों को जिंदा रखना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि कांग्रेस पार्टी मुस्तकबिल में कभी फिर जमहूरियत और आईन पर ऐसा हमला न कर पाए। वजीर खारजा डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया इस वक्त हथियारों के बढ़ते हुए इस्तेमाल, ज्यादा खतरात मोल लेने के रुझान और सोशल मीडिया के दौर से हमाहंग सियासत का मुशाहदा कर रही है। जनूबी कोरिया में अमन और खुशहाली 2026 के जीजू फोरम से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि मुख्तलिफ नवयत की तफरीक का रुझान पहले से ज्यादा बढ़ गया है और ममालिक अपनी सलाहियतों के इस्तेमाल में भी पसोपेश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी तरक्की खुद भी ऐसे रुझानात को फरोग दे रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि कोविड 19 जैसे चैलेंजों, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों या आबोहवा की शदीद सूरतहाल के असरात से निमटने के लिए बैन अल-अक़वामी इश्तराक की जरूरत है। डॉ जयशंकर ने कहा कि बासर ममालिक के दरमियान मुफाहमत और करीबी ताल्लुकात से आलमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने और मखसूस एजेंडों पर मबनी ताउन के जरिए मसाइल से निमटने में मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि भारत और जनूबी कोरिया के दरमियान जहाज साजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेहत, बुनियादी ढांचे और दिफा जैसे शोबों में एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाली बाहमी सलाहियतें मौजूद हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता में एक हादसे में हलाक होने वाले अफराद के करीबी रिश्तेदारों को 2-2 लाख रूपये और जख्मियों को 50-50 हजार रूपये की नकद इमदाद देने का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। जनाब मोदी ने कहा कि रियासती सरकार इस बात को यकीनी बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है कि मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज बरतानिया की राजधानी लंदन के 3 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अपने दौरे के दौरान वो भारत बरतानिया के दरमियान

0: चर्चा में इक्तसादी तजारती समझौते CETA और कंपेनियन डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC के आगाज के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लेंगे, जिनका इतलाक आइंदा माह की 15 तारीख से होगा। इम्कान है कि उनका यह दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी तजारती व सरमायाकारी को नई रफ्तार देगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुफादे आमा की उस अर्जी पर फौरी समाअत करने से आज इनकार कर दिया, जिसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जानिब से वसूल किए गए अतियात की अदालत की निगरानी में तहकीकात कराए जाने की दरख्वास्त की गई है, लेकिन अदालत ने अर्जी गुजार को यकीन दिलाया है कि इस मामले को सुनवाई के लिए जल्द ही फेहरिस्त में शामिल किया जाएगा। बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने आज कहा कि भारत तवानाई का निज़ाम कायम करने की खातिर ब्रिक्स मुल्कों के दरमियान इश्तराक को मुस्तहकम करना चाहता है। गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तरक्याती मकासद और पायदार तरक्की के हुसूल के लिए काबिल इस्तेताअत, काबिल भरोसा और पायदार तवानाई नागुजीर है। तवानाई के शोबे में भारत की सरमायाकारी को उजागर करते हुए जनाब मनोहर लाल ने कहा कि भारत डिजिटल तरीकेकार से चलने वाले दुनिया के सबसे बड़े बिजली निज़ाम में से एक के लिए बुनियाद रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से ज़्यादा स्मार्ट मीटर्स पहले ही लगाए जा चुके हैं और यह सिलसिला आने वाले वर्षों में तेज़ रफ्तारी से जारी रहेगा। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट परवाज का इफ्तिताह किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से मरबूत करने वाली पहली हब एंड स्पोक परवाज का मकसद दुनिया के साथ बिला रुकावट भारत के तूलो अर्ज को मरबूत करना है। वेंजुएला की सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने मुल्क में एक के बाद एक 7.2 और 7.5 शिद्दत के जलजले आने के पेश नज़र मुल्क में हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया है। आज सुबह इन जलजले के सबब क्राकस और मुत्तसिल इलाकों में कई इमारतें ढह गईं। मुल्क से खिताब करते हुए मोहतरमा रोड्रिगेज ने ऐलान किया कि तलबा के लिए क्लासें मुअत्तल की जाती हैं और आइंदा नोटिस तक गैर जरूरी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहेंगी। सदर रोड्रिगेज ने कहा कि सिलसिलेवार ताकतवर जलजले के बाद 32 अफराद हलाक हुए हैं और 700 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वेंजुएला में शदीद जलजले के बाद हुए जानी नुकसान पर रंज व गम का इजहार किया है। फीफा आलमी कप में ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, मैक्सिको और मराकश आज अपने अपने मुतालिका मैच जीतकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गए हैं। जनूबी अफ्रीका आज सुबह मोंटेरे में जनूबी कोरिया से 1 गोल से जीत हासिल करने के बाद पहली मरतबा नॉकआउट मरहले में पहुंचा है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। नायब सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने उन सभी को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान जमहूरी अकदार का दिफा किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए मजबूत बैन अल-अक़वामी इश्तराक पर जोर दिया है। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल जामे इकतसादी और तजारती माहदे के निफाज से पहले बरतानिया का 3 रोजा दौरा करेंगे। भारत ने तवानाई के शोबे में मजीद ब्रिक्स शराकतदारी पर जोर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
2: ठीक है, तुहाडी लॉटरी निकली है, टिकट खरीदी सी नहीं? अच्छा, तुहानू फोन आया है कि तुहाडा नंबर शॉर्टलिस्ट कीता गया, ते हुण आधार नंबर, पैन नंबर ते अकाउंट नंबर देके पैसे तुहाडे खाते विच पै जाने ने। रुको, अजिहा ना करना, ए धोखा हो सकदा है तुहाडी निजी जानकारी चुराउण दा। चौकस रहो, जागरूक बनो, कदे भी बिना सोचे समझे अपनी निजी जानकारी किसे नाल सांझी ना करो।
3: इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां तियां तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत सुनदे आं लता मंगेशकर अते मनहर उदास दी आवाज़ विच फिल्म दा नाम है हीरो।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से।

0: अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ीं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियाँ आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया, एक बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ

0: मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एसजीपीसी ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
2: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
1: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने

0: भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढही। देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र ए।
3: इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

मन की बात मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता नाल सांझी करेंगे अपने मन की बात एतवार 28 जून 2026 नूं दिने 11 बजे आकाशवाणी दे सारे केंद्र सारे चैनल इस नूं प्रसारित करेंगे

0: चकरे चकर गए सने बंदे दे सूर में सिंह किरे चकर गए
1: यो दे निर्बल पै गए हाँ यो

कुरबानी वाली बरात दिल्ली पहुंच गई। बादशाह फरखी ने कहा, सिंह झुक जाओ, पर जड़ा गुरु का सिख है वो गैर दे अगे दुश्मन दे अगे झुक नहीं सकता। गुरु का सिख वड्या जा सकता है, टुक्या जा सकता है, आरे दे नाल चीरा जा सकता है, चरखड़ी दे चढ़ सकता है, बंद बंद कट्टे जा सकते हैं, पुट्ठी खल लहा सकता है, तत्ती तवी ते बह सकता है, नीयां विच खड़ सकता है, पर गुरु का सिख कदे डर के झुकया नहीं। फिर तरह तरह के लालच दिते गए। गुरु का सिख ना तो लालच में आया ते ना किसी भय में आया। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर के सामने

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया देश पराया।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873।
2: दिन दे दिन वजरे ने डीटीएच दी एआईआर पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र ने दिन दे दिन वजरे ने लो सुनदे आ हुण तक दे मुख समाचार। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने ऊर्जा प्रणालियां ते मजबूत विकास सहयोग दा सद्दा दिता। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि कोविड-19 दहशतगर्दी ते अति दियां जलवायु घटनावां दे प्रभाव वर्गियां चुनौतियां दा सामना करन वाले अंतरराष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने श्री राम जन्म भूमि तीर्थ स्टेट ट्रस्ट नूं प्राप्त दान विच कथित माली बेनामियां दी अदालत विच निगरानी हेठ जांच दी मंग करन वाली जनहित अर्जी दी तुरंत सुनवाई करन तों इनकार कर दिता है। पंजाब भर विच अज तो महीने भर चलन वालियां वोटर सूचियां दी विशेष तिब्बर सोध SIR शुरू हो गई है। यह 24 जुलाई तक जारी रहेगी। देश दमनकारी मुगल हुकूमत खिलाफ जंग दी अगवाई करन वाले पहले सिख फौजी जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं अज उहनां दे शहीदी दिहाड़े ते नमन कर रहा है। भारत दे दखल तो बाद पैरिस विच चंडीगढ़ दे विरासती फर्नीचर दी नीलामी रोकी गई।

माफ करना, किसी तकनीक के कारण किसी वो गाना नहीं लगा रहे। मनप्रीत सद्धू का सुनते हैं ये गीत।

प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश, कुड़ियाला तो भेजी है सानू त्रिलोक सिंह, शिवजोत सिंह, राजदीप सिंह, गुरु सिमरन कौर, रहमत कौर, मलतेज सिंह, नवी सिंह। हीरापुर तो भेजी है सानू महेंद्र बिश्नोई, वेद प्रकाश, अमित, अजय, ज्ञान। इन्हां सारे दी पसंद च असीं अगला गीत लगान लगे हाँ दलेर मेहंदी की आवाज़ में। आओ सुनते हैं एक गीत।

आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप दे ग्रुप ए मैच विच बंगलादेश खिलाफ मैदान च उतरेगा। एसी अज दियां न्यूज़ हेडलाइंस। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुन आनंद माते हैं पंजाबी फिल्म संगीत दा। ते पहला गीत हाजिर है फिल्म सुफना दा। इस गीत तो आवाज़ दी है बी पराग ने।

प्रोग्राम च अगला गीत सुनते हाँ मोहम्मद फैज की आवाज़ विच। फिल्म का नाम है सौकन सौकनी टू।

कौन को कलंक रहे हो, राम नाम लेत ही, पतित पवित पए राम कहत ही। ये फरमान भगत नामदेव जी द्वारा उच्चारित है, अर्थात सृष्टि विच रमे हुए राम दा नाम लैण वाले निह कलंक हो जांदे ने ते पतित पवित्र हो जांदे ने उस अकाल पुरख दा नाम जपिया। दसमेश पिता साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसे जीवां नूं धन बयान करदे ने जो मुख तों उस हरि प्रभु दा नाम उचारदे ने ते नाल ही इस नाम दे आसरे विकारां नाल जूझण दी समर्था रखदे ने। अपनी देही नूं सदीवी नहीं समझदे, अकाल पुरख प्रभु दे नाम दे जहाज ते चढ़ के भव सागर तों पार हो जांदे ने। ज्ञान दी बौकर लैके मन दे विकारां नूं

0: तन जियो ते को जग मैं मुखते हर चित मैं जुद विचार है। इस सवैये का गायन किया डॉक्टर अलंकार सिंह होरा। साहिब कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ऐसी महान शख्सियत होए ने कि जेड़े भी आप जी की शरण विच आए आप जी दे ही हो गए। ऐसे अनेकां सिंघां दी गाथा सिख इतिहास विच मिलती है जिन्होंने साहिब दे मार्ग का अनुसरण किया। ईस्वी सन 1708 दे विच गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ की धरती ते लक्ष्मण देव जो बाद विच माधोदास बैरागी बन गए सन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की शरण विच आ गए। गुरु साहिब तो खंडे बाटे की पाहुल छक के आप बंदा सिंह बहादुर बन गए। आप जी ने सिख इतिहास विचलियां शहादतां दियां गाथावां सुनिया ते जुल्म दा टाकरा करन ली गुरु साहिब तो थापड़ा लैके मुहिम आरंभ कर दिती। आप जी ने सरहंद फतेह कीती, अपना जीवन देश कौम अते धर्म दी खातिर अर्पण कर दिता। दरअसल सूरमा उही है जो दीना दे लई जूझ मरदा है। सुनदे हां गुरदर्शन सिंह सोढ़ी होरां पासों वार्ता, सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत।
1: गुरमत अनुसार सारे मनुख बराबर हैं, कोई चंगा जा माड़ा नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज अपनी बाणी विच भगत कबीर जी फरमाउंदे हैं, अव्वल अल्लह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन पले को मंदे। बराबरी का उपदेश दिंदे हुए भी बाणी विच नीवियां नूं बहुत आदर मान दिता गया है। श्री गुरु नानक देव जी अपनी बाणी विच फरमाउंदे हैं कि प्रभु परमात्मा की मेहर उत्थे हुंदी है जिथे नीवियां दी सार लई जांदी है। आप दे बचन हैं, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बखसीस। इसे लई श्री गुरु नानक देव जी मलक भागो दी थां भाई लालो नूं उच्चा दर्जा दिंदे हन। भगत कबीर जी भी अपनी बाणी विच गरीबां दासां नूं सत्कार दिंदे हुए लिखदे हन कि भगवान भी राजे नालों एक दासी दे पुत्तर बिदर दे घर जाना पसंद करदे हन। आप दे बचन हन, राजन कौन तुम्हारा आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओह गरीब मुहे पावे रहाओ। गरीबां बेसहारा नूं भगवान भावें आदर दिंदा है पर समें दियां सरकारां वल्लों आम करके दीन दुखियां उत्ते जुल्म हुंदे रहे हन। जिहड़े सूरबीर योधे अजिहे जुल्म विरुद्ध टक्कर लैंदे हन गुरबाणी अनुसार उही असल सूरमे हन। जिवें भगत कबीर जी दे बचन हन, गगन दमामा बाजियो परयो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ। सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कब हुन छाड़ै खेत। कबीर जी दसदे हन कि मनुखा जन्म रूपी रण खेत्र विच काम आदि विकारां नाल सूरमा बन के जूझन का हुण ही समा है। जो व्यक्ति इन्हां वैरियां नाल जूझदा है बाणी विच उस नूं सूरमा कहा गया है। श्री गुरु अमरदास जी अपनी बाणी विच फरमाउंदे हन, जो जन लूझ मने स्यों से सूरे प्रधाना। जो मनुख इस जन्म विच ही मन नूं मार के संसारक बंधना तो मुक्त हो जाता है उसके मन विच मौत का डर नहीं रह जाता, वो हसदे हुए मौत नूं कबूल करता है। अजिही अवस्था प्राप्त करके ही भगत कबीर जी कहते हैं कि जिस मौत तो लोग डरते हैं मेरे

जित प्राप्त कीती हुई है। मन नूं जितण वाले ही संसार ते जित प्राप्त करदे ने। जा कहो हर रंग लागू इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जणै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। सरवण करदे हां भाई गुरदयाल सिंह अते उनां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

जाकौ हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जने सगल वस्ता के, जाका सतगुर पूरा। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरदयाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा उचारित एक श्लोक विच ऐसे प्राणियां नूं तन बयान कीता गया है ते ऐसे गुरमुख प्यारे जना नूं अकाल पुरख की दरगाह विच परवान मन्या गया है, जिन्हां ने आत्म रस नूं समझिया है, माणिया है ते हरि प्रभु दे रंग विच अपने आप नूं रंगिया है। फरमान है, आत्म रस जिह जानिया हर रंग सहजे माण, नानक तन तन तन जन आए ते परवान। सरवण करदे हां भाई अमरीक सिंह अते उन्हां दे रागी जत्थे पासों इस श्लोक दा गायन।

आत्म रस जह जानिया हर रंग सहजे माण नानक तन तन तन जन आए ते परवान। इस श्लोक का गायन किया सी भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

शास्त्रीय संगीत प्रोग्राम सुर साधना सुनोगे रात 10 बजे। अज इस प्रोग्राम च सितार वादन ते सुनोगे राग बिहाग, तबले ते संगत करनगे जसकरण सिंह ते कलाकार होणगे भक्ता सिंह ते तार ते शहनाई वादन। साढ़े 10 बजे सुनोगे प्रोग्राम सरगम। 6:20 ते होणगियां प्रादेशिक खबरां। 7:30 बजे सुनोगे पंजाबी च खबरां। 8:45 ते तुसीं सुनोगे समाचार संध्या साढ़े दिल्ली केंद्र तो। 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट, 9:30 बजे कंट्री वाइड ते 9:45 ते तुसीं सुनोगे इनसाइट

0: रात 11 बजे सुनोगे दिल्ली केंद्र तो हिंदी समाचार, 11:05 से अंग्रेजी समाचार। ये सी अज रात तक प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों का वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा।
1: एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज़ ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां तियां तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।
0: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, आओ हुण सुनदे हां देश गान।

प्रति सैंपल दी कीमत भी 100 रुपए ही है, पर जो पानी दा सैंपल है ओहो गर्म पानी नाल साफ कीती हुई कंच दी बोतल च उपर तक सैंपल भर के विभाग विच जमा करवाना है। इस किट दी वरतों नाल किसान नू छप्पर दे पानी दी कुल कोलीफॉर्म गिनती अते सिंचाई लई उपयोगता दा मुलांकन हो जांदा है। ता ए भी जरूरी हो जांदा है कि किसान नू ए भी पता लग जांदा है कि ए पानी यूज करना है कि नहीं करना है या फिर ए मनुखी बीमारी दा कारण हो सकता है।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

अमेजॉन के सीईओ एंडी जेसी नाल मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निवेश नौजवानों लिए नवे मौके पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि यह भारत विच निवेश करन विच दुनिया भर विच वध रही दिलचस्पी नूं दर्शाउंदा है। ये खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRN जलंधर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अज राष्ट्रपति भवन विखे फौजी इंजीनियर सेवा के सिख्यार्थी अधिकारियों नाल मुलाकात की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच उन्होंने कहा कि फौजी इंजीनियर सेवा के अधिकारियों का हुनर समर्पण और सख्त मेहनत देश के सुरक्षा सिलसिले को मजबूत करन विच अहम भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इन अधिकारियों के यतन फौज समुद्री फौज से हवाई फौज के मुलाजमान को अपने फर्ज प्रभावशाली ढंग निभाने के योग बनाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कामों को ना सिर्फ एक सुरक्षित मजबूत सगो एक साफ सुथरा चुगिरदे प्रखी सुखावां भारत बनाने विच भी योगदान पाना चाहिए है। उपराष्ट्रपति अते राज्यसभा दे चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने संसद भवन विच राज्यसभा दे 10 नवे चुने गए अते मुड़ चुने गए मैंबरां नूं अहुदे दी सहुं चुकाई। सहुं चुक्कण वालियां विच आंध्र प्रदेश तों तेलुगु देशम पार्टी दे सना सतीश बाबू, विजय चिंता कायाला अते बश्यम रामकृष्णन ते जनसेना पार्टी दे लिंगम नेनी रमेश शामिल ने। इस तों इलावा अरुणाचल प्रदेश तों भाजपा दे ताई तागक, उड़ीसा तों भाजपा दे देबाशीष सवंत राय, तमिलनाडु तों कांग्रेस दे प्रवीण चक्रवर्ती ते गुजरात तों भाजपा दे राजेश परमानंद शुक्ला ने भी सहुं चुकी। झारखंड तों झारखंड मुक्ति मोर्चा दे वैद्यनाथ राम अते आजाद मैंबर परिमल नाथवानी ने भी राज्यसभा मैंबरां वजों सहुं चुकी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीनियर रेलवे अधिकारियों नाल एक जायजा मीटिंग की थी। मीटिंग विच भारतीय रेलवे नूं माल ढोआ ढुआई दा सब तों प्रसिद्ध ढंग बनाउण लई कीते जा रहे सुधारां ते चर्चा कीती गई। मीटिंग विच यह दस्या गया कि मीटिंग अते नमक वर्गियां वस्तां लई सीमेंट दे नाल नाल विशेष तौर ते तैयार कीतियां गईयां नवीयां माल ढोआ ढुआई वालियां वैगनां दी सफलता ने सनत दीयां जरूरतां अनुसार वैगन डिजाइन नूं तैयार करन दी महत्ता नूं साबित कीता है। इन्हां विशेष वैगनां ने लोडिंग अनलोडिंग ते आवाजाई नूं आसान ते वधेरे कुशल बनाया है जिस नाल रेलवे ते माल ढोआ ढुआई वधी है। श्री वैष्णव ने भी कहा कि डिजाइन प्रवानगी अते प्रोटोटाइप विकास लई सख्त मापदंड अपनाउण नाल देश विच उच्च गुणवत्ता वाले माल ढोआ ढुआई वाले वैगनां दा निर्माण यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि नवे डिजाइन ते नवीनता नूं उत्साहित करन लई भारतीय रेलवे दी माल ढोआ ढुआई नूं होर मजबूत कीता जाएगा। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी नाल रल के सांझे ऑपरेशन विच सरहदी जिले अमृतसर विच एक अफगान नागरिक ते एक नाबालिग समेत 7 मुलजमान नूं गिरफ्तार करदिया सरहद पारों गैर कानूनी हथियारां नशीले पदार्थां ते हवाला नैटवर्क का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कब्जे विचों 2 सब मशीन गन, 5 किलोग्राम तो वध हैरोइन अते 30,38,000 रुपए की हवाला रकम समेत 10 आधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस हल्कियां ने दस्सिया है कि मुढ़ली जांच मुताबिक मुलजम कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मा राही काम करन वाले विदेशी हैंडलरां नाल जुड़े हुए सन। उन्हां नूं खेपां मिलदियां सन अते अपराधिक तत्तां नूं नशीले पदार्थ ते गैर कानूनी हथियार वंडदे सन। नैटवर्क ने वख वख थावां ते माली लैण देण अते हवाला माध्यमां दी भी वरतों की थी। अगलेरी जांच जारी है। केंद्रीय सड़क आवाजाई ते शाहराह मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना जम्मू कश्मीर अते लद्दाख विच राष्ट्रीय शाहराह प्रोजेक्टा दी प्रगति गुणवत्ता ते रख रखा दी समीक्षा की थी। इन्हां प्रोजेक्टा विच तेलंगाना विच करीब 4,931 किलोमीटर राष्ट्रीय शाहराह, जम्मू कश्मीर विच 2,035 किलोमीटर अते लद्दाख विच 804 किलोमीटर शामिल ने। नवी दिल्ली विच समीक्षा मीटिंग दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों अते निर्माण एजेंसियां नूं निगरानी प्रणालियों नूं मजबूत करन अते सारे प्रोजेक्टां नूं समय सिर पूरा करन नूं यकीनी बनाउण दे निर्देश दित्ते। उन्होंने शाहराह दी मजबूती, यात्रियों दे आराम विच सुधार ते लंबे समय दी कारगुजारी नूं यकीनी बनाउण लई आधुनिक निर्माण तकनीकां अते सब तों वधिया ढंग तरीकियां नूं अपनाउण दी जरूरत ते वी जोर दित्ता। खेडां विच तन्वी शर्मा, देविका सिहाग अते किदांबी श्रीकांत होर भारतीय खिडारियों के नाल US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल विच पहुंच गए ने। तन्वी शर्मा अते देविका सिहाग ने अज औरतों के सिंगल्स मैच विच आसान जित्तां दर्ज कीतियां। तन्वी ने जर्मनी की यवोन ली नूं जदों कि देविका ने पेरू की इनेस लूसिया कैस्टीलो नूं हराया। मर्दां दे सिंगल्स विच किदांबी श्रीकांत ने भारत दे डी सनीथ नूं हराया। औरतां दे ICC 2020 विश्व कप क्रिकेट विच मैनचेस्टर दे अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड विखे ग्रुप ए दे मुकाबले विच भारत दा मुकाबला बांग्लादेश नाल हो रहा है। बांग्लादेश ने टॉस जीत के भारत नूं पहला गेंदबाजी करन लई कहा है। आखिर विच इस बुलेटिन दीआं खास खास खबरां एक बार

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया कि भारत बर्तानिया आजाद व्यापार समझौता सब तो व्यापक व्यापार समझौता है। भारत 2026 विच अपने ब्रिक्स प्रधान की हेठ गुरुग्राम विच 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। रक्षा आत्मनिर्भरता के एक अहम मील पत्थर वजो DRDO ने स्वदेशी नेत्रा एयरबोन अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लिए अंतिम संचालन मंजूरी प्राप्त कर ली है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीनियर रेलवे अधिकारियों नाल समीक्षा मीटिंग की थी। ते औरतों के ICC 2020 विश्व कप च मैनचेस्टर के अमीरात ओल्ड ट्रैफर्ड विखे भारत ते बांग्लादेश दरमियान मुकाबला जारी है। इस नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 बजे होएगा। नमस्कार।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: जो शजर सूख गया।
1: आबशार प्रोग्राम तो सुन रहे से परवेज मेहंदी की आवाज़ में खूबसूरत गज़ल। असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं, तुसी साड़ी प्रोग्राम्स वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो।
2: इंग्लैंड की धरती ते भारत दियां तियां तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लग गई लगदी है, मुबारक फेरते। पर किते उन्हां ने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउण दी गल तां नहीं कही? जे कही है तां फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि अजकल इह ठगण दे नवें तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मंगदे।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
4: अंतराल तो बाद एक बार फिर स्वागत है थोड़े प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दे विच अपनी दोस्त कविता दे नाल। अज असी दोस्तों गल कर रहे हैं डिप्रेशन दे। दोस्तों जिहड़ा अज दा समा चल रहा है इहदे विच सोशल मीडिया भी एक बहुत वड्डा कारण है डिप्रेशन ते एंजाइटी लई। पहला लोग अपनी जिंदगी जिउंदे सी ते अज लोग दूजियां दी जिंदगी नूं देख के अपनी जिंदगी नूं जज करदे ने। किसी की मुस्कान देख के असीं सोच लैंदे हां कि वह बहुत ही खुश है, पर सच ये है कि हर जिहड़ा हसदा हुंदा चेहरा है ना वह खुश नहीं हुंदा ते जिहड़ा हर चुप इंसान है वह कमज़ोर नहीं हुंदा। उहदी चुप दे पिछे भी कई राज हुंदे ने ते उहदी खुशी दे पिछे भी कई राज हुंदे ने। इसलिए किसी नूं भी कमज़ोर ना समझो ते किसी नूं देख के जज ना करो। आओ इस प्रोग्राम का अगला गीत सुनते हैं। आवाज़ दिती है श्रेया घोषाल ने।

0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2

0: 1035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
1: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी

0: तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत एक वैश्विक टेक पावर बनकर उभरा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वदेशी नवाचारों और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में तकनीक की दिशा तय करने में सक्रिय भागीदार है। इस अहम विषय पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ आईटी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: डॉक्टर राय, हम आपसे जानना चाहेंगे, भारत ने जिस तरह का एक इंटरनेट बूम आया जो डिजिटल इंडिया 2015 से शुरू हुआ, अगर हम कुछ जो बेसिक आंकड़े हैं उनको देखें, ऑप्टिकल फाइबर एक्सपेंशन 2019 में 19.35 लाख रूट किलोमीटर था, जो बढ़कर 42 लाख रूट किलोमीटर से ऊपर है। और अगर हम इंटरनेट कनेक्शंस की बात करें तो 25 करोड़ से थोड़े ज़्यादा थे 2014 में, और अब वो 102 करोड़ को पार कर गए हैं। और अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शंस की बात करें तो इस दौरान वो 6 करोड़ से 99.5 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो कैसे देखते हैं आप इस डिजिटल एक्सपेंशन को, और जो भारत की टेक्नोलॉजिकल मजबूती है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उसके क्या बेनिफिट्स हैं?
2: भारत ने पिछले 15 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, साइबर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की है। आज भारत में 100 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन हैं। मैं आपको बताऊं कि आज से 10 साल पहले जो मोबाइल फ़ोन में स्मार्टफोन की जो संख्या होती थी वो करीब करीब 32-33% होती थी, आज वो 57% मोबाइल फोन स्मार्टफोन्स है। हर हाथ में देखेंगे स्मार्टफोन है, और हर बच्चा, हर इंसान स्मार्टफोन लेना चाहता है। ये नहीं कहता मैं कि वो फीचर्स फोन नहीं लिए जाते, वो भी लिए जाते हैं एक पर्टिकुलर क्लास में, या गवर्नमेंट में भी लिए जाते हैं जो कि एक किस्म का क्लासिफाइड काम करते हैं, पर ज्यादातर लोग स्मार्टफोन लेते हैं। अब उस स्मार्टफोन लेने की वजह से देखिए पिछले 15 साल में इंटरनेट की स्पीड कितनी बढ़ गई है। आज करीब करीब 25 GB पर मंथ की दाब से डेटा एक यूजर लेता है। 25% कॉस्ट गिर गई है, 8 से 10 रुपए की कॉस्ट है पर जीबी। मैं अगर ये कहूं कि भारत जो है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से कंप्यूटराइजेशन, डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसका नतीजा एडवांटेज काफी है भारत को कि भारत के पास कंजम्पशन हर प्रोडक्ट की है, और हर प्रोडक्ट हर सोसाइटी के लिए चाहिए। तो पिछले 15 साल में काफी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैंने कंज्यूमर की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कहेंगे तो कहां हम 200 मेगावाट की वो डेटा सेंटर्स थे, क्लाउड थे, आज 1500 गीगावाट का क्लाउड हमारे पास इंस्टॉल्ड है भारत के अंदर, और वो 3000 गीगावाट टारगेट है अगले 5 साल में उसको करने का। आज विश्व का कोई भी क्लाउड मैन्युफैक्चरर नहीं है जो भारत में नहीं, हर सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी का डिजाइन सेंटर भारत में है। एक TSMC जो वर्ल्ड की एक प्रोडक्शन कंपनी है, सबसे बड़ी फैब कंपनी है, उसका भी डिजाइन सेंटर भारत में है। तो हर चीज में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कंजम्पशन है, ये जो एक्सपेंशन है, ये हमको प्रोडक्ट्स की तरफ, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बहुत तेजी से ले जा रहा है। एक टाइम में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट काफी थी, बीच में फिर एक थोड़ा सा स्लंप आ गया। आज देखिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है, हम सोचते भी नहीं थे, हम सोचते थे कीबोर्ड आपको भेजेंगे या हम छोटे मॉनिटर भेजेंगे, आज हम बहुत सी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपोर्ट मार्केट में कर रहे हैं।
1: सो जैसा आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत ही अपनी कहें कि फोकस्ड जो नीतियां हैं और जो रणनीतिक निवेश है उसके साथ देश की तकनीकी क्षमता को डेवलप किया है, जिसके साथ साथ विश्वसनीयता भी मजबूत हुई है।

0: भारत में, अगर हम जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है जिसे इंडिया स्टैक कहा जाता है उसकी बात करें, तो उसके बारे में आप बताएं कि उसमें जो एग्रीमेंट हुई है 23 देशों के साथ हमारे तरफ से जो तकनीक वहां तक पहुंचाई जा रही है, ये कितना इम्पोर्टेंट एक उपलब्धि है हमारे देश के लिए।
1: देखिए, एक जमाने में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी और भारत ने उसको निकाला, और इसका बैकग्राउंड देखिए कि हमने एक यूपीआई सिस्टम निकाला। भारत जो हो उस अग्रणी देश है जिसमें यूपीआई सिस्टम चालू हुआ। आज दिन भर में बिलियन से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, और जितने भी बड़ी कार्ड कंपनीज हैं ये सब यूपीआई को मानने को, रिकॉग्निशन करने को तैयार नहीं थे। आज जितनी भी संसार की, विश्व की जब कार्ड कंपनीज हैं वो सब यूपीआई इंटरफेस पे आती है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कॉमन इंटरफेस हमने बनाया है और हर विश्व की कंपनी उस इंटरफेस से लेके हमारे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर पे जुड़ जाती है। इसको एग्जांपल जब हमारा सक्सेसफुल हो गया, फिर हमने इस भारत ने कहा कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो पूरे देश में या विश्व में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज सब कनेक्टेड रहते हैं। आप उस पे ई कॉमर्स की एप्लीकेशन लगा लीजिए, कोई और किसी किस्म की एप्लीकेशन लगा लीजिए, तो पर्पस ये था कि सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक कॉमन इंटरफेस पे रहना चाहिए,
0: जी
1: ताकि किसी को कनेक्टिविटी की जरूरत ना पड़े और कहीं मोनोपोली की जरूरत ना पड़े, और हर देश, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी उस कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर रह के उसका इस्तेमाल वैसा ही हो एक्सपेंशन हो जैसे यूपीआई के एक्सपेंशन।
0: और बिल्कुल, इसमें डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज भी एफिशिएंट हुई हैं और सिक्योर हुई हैं और लार्ज स्केल पर संभव हो पाई हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है।
1: क्योंकि हम डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, हम एक दूसरे को बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आप यूपीआई देखिए ना, मैं स्टेट बैंक में हूँ, दूसरा आंध्रा बैंक में है, तीसरा किसी और बैंक में है, पांचवा यूनियन बैंक में है, छठा सेंट्रल बैंक में है, किसी में भी है, आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। कहाँ, हमने 2000 में से चालू किया था, आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया। तो ऐसा ही इम्पैक्ट इंडिया स्टेक जो बना रहा है वो ही इम्पैक्ट है उसका। एक कॉमन लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, जिससे एप्लीकेशन का एक्सेस, एप्लीकेशन का रिट्रीव एक बहुत ही आसान हो जाता है और मोनोपोली टूट जाती है।
0: बिल्कुल
1: आज की डेट में अगर प्रोप्राइटरी लेंगे तो एक बारी प्रोप्राइटरी आप टेंडर करके ले लेंगे, दूसरी बारी आपके दाम ज्यादा लेगा, कॉस्ट आपकी ज्यादा लेगा, प्रोप्राइटरी हो जाता है। एक कॉमन इंटरफेस पे आ जाते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरीनेस की बात खत्म हो जाती है। एक तो यूसेज में आसान मिलती है, एप्लीकेशन में आसान हो जाता है, उसके अलावा आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है।
0: आपने शुरुआत में ही बात करी थी जो एडवांस टेक क्षमताएं हैं उनके विकास की, जो फ्यूचर रेडीनेस के लिए इम्पोर्टेंट सरकार ने आइडेंटिफाई की हैं, सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर्स, ब्लॉकचेन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनके लिए जो जो ये फोकस्ड स्कीम्स लाई गई हैं उनको मिशन मोड में जिस तरह से अप्लाई किया गया है, और फ्यूचर रेडी स्किलिंग के लिए भी जो बहुत कंसर्टेड, बहुत ही मजबूत एफर्ट्स किए गए हैं कि पूरे देश में AI स्किलिंग हो या जो और टेक्नोलॉजीज हैं उनमें स्किलिंग हो, ये आपको कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगता है ये फ्यूचर रेडीनेस के लिए प्रिपेयर्डनेस पर कार्य हो रहा है?
1: आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम का, कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी टेक्नोलॉजी आइटम हो, नॉन टेक्नोलॉजी आइटम हो, इंडस्ट्रियल आइटम हो, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशन, ये इनबिल्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। आप बैंक में जाइए, बैंक में आज कुछ जाता नहीं है, और टेक्नोलॉजी है बैंक में, सिर्फ फाइनेंस
0: जी
1: दूर की बात है। सिर्फ आज बैंक एक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही चलता है। पावर सेक्टर में टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कम है, पर टेक्नोलॉजी जो ड्राइव करती है पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस को, पावर सेक्टर को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी क्वालिटी को, उसकी प्रोडक्टिविटी। अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रोल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा हो गया, तो उसको देखते हुए ही भारत ने पिछले 5 साल से इस पे प्लानिंग चालू कर दी थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में बनाया भारत ने, उसका आउटले 76,000 करोड़ रखा, उसके बाद 1,000 करोड़ 2025 में और ऐड कर दिया उसमें। उसका नतीजा क्या हुआ कि हमने एक सेमीकंडक्टर मिशन में हमारा गुजरात में धुलेरा जो है उसको फोकस किया, ताकि हम उसको सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से उसको बनाएंगे।
0: जी
1: और भी एरिया है।

0: असम में सेमीकंडक्टर को आगे करने के लिए उन्होंने एरिया आइडेंटिफाई किया उन्होंने। आज भारत में कोई भी सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी है उसका R&D सेंटर यहाँ, R&D डिजाइन यहीं होते हैं। आप इंटेल ले लीजिए, आप ARM आर्म ले लीजिए, आप TSMC ले लीजिएगा, जो भी कंपनी आप देंगी वर्ल्ड की फेमस कंपनी, सबका यहाँ डिजाइन सेंटर। तो
1: जी
0: उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर मिशन लगाया गया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया AI मिशन भारत ने बनाया, जिसमें हमने आउटले 10,000 करोड़ रखा। उसके अंदर हमने एक 6 को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए,
1: जी
0: IIT कानपुर, IIT मद्रास, IISc बैंगलोर, और उनको 1,400 करोड़ रुपया आवंटन भी किया कि आप इसको आगे काम करिए, उनका डिफाइन करिए।
1: जी
0: ये जितने भी 6 सेंटर्स हैं, इन 6 सेंटर्स का अपना अलग रोल है। हमारा AI की स्पेशलाइजेशन आज के भारत में एक हम एप्लीकेशन की तरह हमारा बहुत स्पेशलाइजेशन है, और उसमें हमारे पास 4.5 लाख ट्रेन मैन पावर है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन हमें एक सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए हमें और AI के दूसरे सेक्टर भी चाहिए, तो
1: जी
0: हमें AI टूल्स भी बनाने हैं और हमें ऐसी दूसरे और एप्लीकेशन करनी है। देखिए, संसार में 3 देश ऐसे हैं जिनके पास AI की कुछ कंपोनेंट्स हैं, और AI कंपोनेंट्स में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। भारत, चीन और अमेरिका, इन तीनों देशों के पास बहुत डेटा है, सारा डेटा इन्हीं कंट्रीज के पास है। पॉपुलेशन अमेरिका के पास, सारी IT कंपनीज वहां पे बैठी हुई हैं, चाइना की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत है। तो इंडिया AI के क्षेत्र में एक यूनिक पोजीशन रखता है कि हमारे पास बहुत डेटा है। AI क्वांटम मिशन पे आई है, क्वांटम इतना जरूरी हो गया है, इंटरनेट पे जो ट्रैफिक चलता है वो 99% इंक्रिप्टेड होता है प्राइवेसी और सिक्योरिटी से, ताकि कोई इंफॉर्मेशन बीच में टैप ना कर पाए, उस पर अटैक ना कर पाए, तो इंक्रिप्ट करके चलते हैं। आपका वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आप देखेंगे उस पर लिखा हुआ HTTPS, इसका मतलब है सिक्योर, सिक्योर का मतलब है इंक्रिप्टेड डेटा है। अब इसके साथ एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी भारत सरकार ने बनाया,
1: जी
0: जिसका आउटले भी करीब करीब 125 करोड़ पर रखा। उनका काम था एक अग्रणी के तौर पे एक R&D प्रोडक्ट डेवलप करें। अब इन सबको सपोर्ट करने के लिए भारत सरकार ने कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रेंथन किया। आप देखिए कि जो ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट है, हम इस वक्त 38वें पायदान पे हैं
1: बिल्कुल
0: और 2015 में 81वें थे। अब उस पे हम इम्प्रूव करके 38वें हो गया। अब अगले आप 5 साल में आप देखेंगे कि ये 38 जो है हम फर्स्ट 10 में आ जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी के इंडेक्स में जो UN यूनाइटेड नेशन इंडेक्स देता है, हम पहले 10 में आते हैं इंप्रूवमेंट में। पिछले 5-6 साल में हम 17वें नंबर से इंप्रूव करके 10 के अंदर आ गए, जो सेफ कंट्री मानी जाती है, हम उसके अंदर आ गए। अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब के एक मैच्योर नेशन निकल के निकलेगा।
1: डॉक्टर राय, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस समग्र चर्चा के लिए, जिसमें आपने हमें बताया कि भारत कैसे एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में उभर रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से हमारी फ्यूचर रेडी स्किलिंग हुई है, फ्यूचर रेडी हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनकी डेवलपमेंट हुई है सरकार के एफर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर के एफर्ट्स, स्टार्टअप्स के एफर्ट्स के द्वारा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे विश्व में भारत की उभरती तकनीक और प्रौद्योगिकी की ताकत पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे तकनीक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर गुलशन राय। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। कंट्री वाइड।

किशोर कुमार दी आवाज़ ते सुन रहे सी एक खूबसूरत गीत ऐ खुदा। आओ अगला गीत सुनते हैं, आवाज़ दिती है आशा भोसले ते किशोर कुमार ने। गीत दे बोल ने मैं नाचू तू बंसी बजा।

मोहम्मद रफी ते आशा भोसले की आवाज़ च सुन रहे से अभी ना जाओ छोड़ के। आओ अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ दे विच। गीत दे बोलने तू कहाँ आ गई जिंदगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है।

0: राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will

0: मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों
1: दोस्तों इस प्रोग्राम च साडी वध तो वध कोशिश हुंदी है इस प्रोग्राम च साडी वध तो वध कोशिश हुंदी है कि अपने दोस्तां दी कॉल नूं रिसीव करिए ते उहनां दी फरमाइश दा गीत उहनां नूं सुनाइए। हैलो
2: हैलो सर जी सत श्री अकाल।
1: सत श्री अकाल जी, ते अपने बारे दस दिओ जी, कौन ते कित्थों जी?
2: सर शरण गल कर रही हां जगतपुर जट्टा दा।
1: ते किहो जिहा बीतिया जी अज दा दिन?
2: सर जी अज दा दिन खराब सी।
1: जिहड़ा दिन असीं खराब गिंदे हां ते अगर पॉजिटिव वे नाल देखो तां उस दिन तों हुई खराबी तों कुछ ना कुछ सीखण नूं जरूर

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: आसमानी वीर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जनाब, ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: सुखबीर सिंह छाज दी बोलता मेरे सिंह को।
0: क्या बात है जी। होर सुनाओ
1: और ठीक
0: सुखबीर जी, की हाल चाल है?
1: हाल चाल वधिया ने, तुसी दसो ठीक हो भाजी? गीत
0: बहुत वधिया जी, ते गीत दी फरमाइश भी दस दो जी।
1: सर सुदेश कुमारी जी का ला दो। हाँ
0: सुदेश कुमारी जी दा। ते
1: जी,
0: अज दा दिन किहो जिहा बीतिया ते मौसम किहो जिहा रिहा जी छाजली च?
1: मौसम तो गर्मी है जी, दिन वधिया बीते जी। हाँ
0: ठीक है जी।
1: जी हाँ, बहुत वधिया दिन सी जी।
0: ते सुदेश कुमारी दा दो गाना सुनाने हैं तुहानू, हरभजन
1: हाँ
0: मान
1: जी
0: ते
1: हाँ जी,
0: सुदेश कुमारी दी आवाज़ च जागो है जी।
1: ठीक है ला दो जी, ला दो। ठीक
0: फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: है बरे।
0: टाली वाला जट्टा तो साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर, हरजिंदर, गिदड़बाहा तो मनजीत तनेजा ते परवीन तनेजा, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, नीलम, बीकेपुरी, कैलाश, रमा ते आरएसपुरी।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार अश्विनी जी।
0: नमस्कार जनाब, ते अपने बारे दस दियो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: श्री गुरु रविदास नगर मराठो कीर्तन रसगनिया जी।
0: होर सुनाओ रसगनिया जी, की हाल चाल तुहाडे ते तुहाडे
1: मलोड़ दे।
0: इलाके दे जी, मलोड़ दे
1: हाँ जी,
0: जी?

0: हेलो।
1: हेलो सिंह
0: हाँ जी, स्वागत है जी
1: गुप्ता
0: प्रोग्राम
1: जी।
0: जी।
1: हेलो
0: हेलो,
1: सिंह भाई नमस्कार।
0: नमस्कार जनाब। थे अपने बारे भी दसते हो जी, कौन थे कितो जी?
1: सिंह भाई बिट्टू बोल रहे जी, दूरदर्शन का सेट मंजूर चीज है। बस
0: होर सुनाओ जी, की कीता अज सारा दिन भर?
1: ठीक है, जुड़े हुए हैं जेडी आकाशवाणी लाया सुनते हैं काम।
0: क्या बात है जी। ते फरमाइश भी दस दियो जी, गीत केड़ा सुनाइए जी?
1: हाँ जी, मैंने मेरी एक सुना पैदा देने सुना दो भाई, 2 मिनट वाली छुट्टी है। ओके
0: फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: जी भाई।
0: पिंड नथाना जिला बठिंडा तो हरजिंदर चिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता और गीता मसीता डब वाली तो दर्शन लोट गुरमुख इंदरजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर ते हनी लोट पवनाल हाजीपुर तो चौधरी गोकुलदास विजय कुमार के कोंडल ते आर के कोंडल दोस्तों की मिली जुली फरमाइश काला डोरिया कुंडे ना लड़िए हुए।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: नमस्कार जी। सर
0: नमस्कार जनाब, ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी,
1: जी, मैं जनकरा
0: केड़ी जगह तो जी,
1: गुरदासपुर में जी। सर
0: ते गीत दी फरमाइश भी दस दो जी।
1: जी, आप
0: जरूर सुनावांगे जी, फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: थैंक यू सर बहुत।
0: कुछ सुनेहे भी शामिल कर लेने हैं जी। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया जमशेदपुर तो, फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो, गुरविंदर सिंह पांदा, इंदरजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांदा, अमरगढ़ तहसील सादुल शहर तो, कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, हरविंदर मान, राजा सिंह मान, कुलविंदर कौर ते के एस मान। गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ च।

0: हेलो।
1: प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जनाब, कौन ते कित्थों जी?
1: सोमदत्त बोलदा जी, मैं इस गेट नाभे तो जी। बहुत
0: क्या बात है जी। होर सुनाओ सोमदत्त जी, की हाल चाल तुहाडे? ते
1: वधिया हाल चाल।
0: गीत दी फरमाइश भी दस दियो जी।
1: गीत आपां सुणांगे राज बराड़ जी दा जी।
0: जरूर सुनावांगे जी। फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।
0: गांधी चौंक रोपड़ तो हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग विरक ते मीका विरक, सेक्टर 67 मोहाली तो टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा कालका तो शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज ते साहिल पिंड खाने की ढाब मलोड़ तो शमशेर सिंह कोलतर, जसविंदर कौर, करन प्रताप सिंह, मनरीत कौर ते तरनवीर दे नाल मनताज। गीत सुरमा, गायक कलाकार राज बराड़।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जनाब। ते अपने बारे दस्सो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: मंडी हरजी राम मलोड़ तो महेशगढ़ बोल रहा हूँ।
0: ते गीत दी फरमाइश भी दस्सो सर,
1: बिट्टी दियां बोलियां जी।
0: जरूर सुनावांगे जी। फोन करने लई शुक्रिया जी।
1: धन्यवाद जी।

0: हेलो,
1: हेलो, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दियो जी। सब तो पहला जी
1: मनजीत कौर बोल रही हूँ, दिल्ली तो।
0: ते मनजीत कौर जी, केहो जा बीते आज दा दिन ते मौसम केहो जा रहा दिल्ली दा?
1: मौसम कल थोड़ा बारिश हुई है ना, आज ठीक से थोड़ा मौसम।
0: जून महीने ठंडक दा एहसास करवाता परमात्मा ने।
1: हाँ जी, बड़ी गर्मी सी पर थोड़ा फर्क पै गया कल की बारिश नाल।
0: ते हुन अपनी वधिया जी गीत दी फरमाइश भी दस दियो जी।
1: सुना दो, गैदरी का सुना दो गीत कोई भी। तो
0: जरूर सुनाने हैं जी। फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: बहुत बहुत थैंक यू।
0: मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज। मुल्लापुर दाखा मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, बिट्टू जैन, टीटू जैन ते जे बी राव।

0: हेलो।
1: हेलो जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी। ते अपने बारे दस दो जी, कौन ते कित्थों जी?
1: सुनिए
0: गीत केड़ा जी?
1: गीत सर, गुरनाम दिला दो आपां दोवें।
0: जरूर सुनाने हैं जी। फोन करने शुक्रिया जी।
1: ओके जी।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो,
0: जी, स्वागत है जी प्रोग्राम च।
1: सत श्रीकाल जी। दरबार सिंह बोलदा जी। मैं
0: केड़ी जगह तो जी?
1: फोर्ट कनेडा तो बोलदा जी।
0: ते गीत दी फरमाइश दस दियो जी, केड़े गायक दा गीत लगाइए जी?
1: नछत्तर का गाना सुनना जी, रुत प्यार थी
0: नछत्तर
1: सत्ता।
0: ए सिंगर अपने कोल नहीं निकले जी, और कोई गायक दा दस दियो जी गीत।
1: फिर कोई भी सुना दो अपने।
0: चलो जी, तुहानू सुनाने आ जी जेड़ा गीत सारे दोस्तों नु पसंद आएगा। फोन करने लिए शुक्रिया जी। गीत सुनाने आ जी, लाल चंद यमला जट दी आवाज़ च, उन्ना की रज गए खाना। फोन करने लिए शुक्रिया जी।
1: ठीक है जी।

अची प्रीत हम तुम स्यो जोरी, तुम स्यो जोर अवर संग तोरी। ए बाणी फरमान भगत रविदास जी दे हिरदे दी वेदना है। आप जी प्रभु चरणा च बेनती करदे ने कि हे माया दे पति माधो, जेकर आप जी प्रीत ना तोड़ो तां मैं कदे भी नहीं तोड़ांगा, क्योंकि मैं तां होरना नालों प्रीत तोड़ के आप जी दे नाल सच्ची प्रीत स्थापित कीती है। माधवे तुम न तोरा हो तो हम नहीं तोरे, तुम स्यो तोर कवन स्यो जोरे। प्रभु दे नाल मिलाप दी तांग जीव रूप स्त्री नू मुड कदीम तो ही रही है, ताही फिर ओ प्रभु

0: प्रभ मिल बेकाओ प्रीत मन लागी पाए लगाओ मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ पागी। इस शब्द का गायन किया सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी कुलदीप सिंह।
1: ए पावन पवित्र शब्द शांति दे पुंज शहीदां दे सरताज बाणी दे संपादन करता धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी का उचारिया होया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच राग गौड़ी अंग 204 उपर शोभायमान है। इस शब्द विच परमात्मा नूं मिलन दी प्रीत दा वर्णन है। सिद्धांत यह है कि जदों पिछले जन्मां दे शुभ कर्म जो पिछले जन्म विच कीते हन उस दे अंकुर जदों फुट पैंदे हन तां परमात्मा नूं प्रीत करन वाले रसक बैरागी उस प्रभु दे सुत्ते सिर दी दर्शन कर लैंदे हन। क्योंकि मिलाप दा मुढ़ प्रभु प्रति लगन है। जदों कोई जीव इस्त्री लगन विच मगन हो के प्रभु प्रीतम अगे अरदास बेनती करती है तां उस नूं फल लगता है। इस शब्द विच प्रभु प्रीत प्रभु अगे अरदास प्रभु दे घर दी कथा सुननी सारे शब्द दा केंद्री भाव शब्द दियां रहाओ वालियां पंगतियां विच दर्ज है। प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी। हे भाई मेरे मन विच परमात्मा नूं मिलन लई प्रभु प्रीत लग गई है भाव प्रभु दा प्यार पैदा हो गया है। जे कोई मैनू परमात्मा नाल मिला देवे तां मैं उस संत दे भाव मिलाप करवाउण वाले दे चरनी लग जावां ते उस नूं प्रभु दे मिलाप दी बेनती करां। इस प्रथाए धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी राग जैसरी विच भी फुरमांदे हन। कोई जन हर स्यों देवें जोर चरण गहो बकों शुभ रसना दीजै प्राण अकोर। कोई रब दा प्यारा मैनू रब नाल मिला देवे तां मैं उस दे चरण पकड़ लवां ते उस बारे शुभ बचन बोलां भाव उस दी सिफत करां। जे मैनू अपने प्राण भी देने पैण तां मैं अपने प्राण भी उस नूं ही दे देवां। बाणी दा सिद्धांत है कि जे परमात्मा नूं मिलना है तां पूरा गुरु ही विचोला बन के मिला सकदा है। रामकली की वार विच गुरु अर्जन देव जी एक श्लोक राही सिक्ख्या दिंदे हन। जे प्रभु अगे अरदास करनी है तां प्रभु बेनती सुन लैंदा है। मैनू पूरा गुरु ही मिला सकदा है जिस अगे मैं अपना मन तन समर्पित कर देवां। चौथे पातशाह जी गुरु रामदास जी सूही राग विच इस प्रथाए बख्शिश भरिया बचन उचारदे हन कि जे कोई सज्जन मैनू परमात्मा दी प्राप्ति करा देवे तां मैं ऐसा सज्जन ही इस जगत विचों लब्भां। अमृत बचन हन कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मिलाए सतगुर मिले हर पाया मिलिया सहज सुभाए। ओ सज्जन भी गुरु ही है जिस द्वारा हर पाया जांदा है भाव प्रभु मिलाप हुंदा है। विचार अधीन रहो वालियां पंक्तियां हन पाए लगो मोहे करो बेनती को संत मिले वड भागी। भाव हे भाई जे प्रभु दी प्रीत पैदा हो जावे तां पूरे गुरु ने ही तैनू उस परमात्मा दा दर्शन करवाउणा है। तू पूरे गुरु दे चरणी लग जा गुरु अगे ही बेनती करनी है कि मैनू परमात्मा दा मिलाप हासिल हो जावे। विचार अधीन शब्द दीआं पंक्तियां

0: मन अर्पों तन राखों आगै, मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै, अन दिन फिरों तिस पिछै विरागी। सतगुरु जी उचारण करते हैं कि मैं अपना मन, मैं अपना तन, मैं अपना कमाया हुआ सारा धन अते अपनी मत भी उस अगे रखदे हां जो मैनू प्रभु दे घर दी कथा सुनावे, पाप परमात्मा दे घर दी गल सुनावे। जदों मिलाप हासिल हो जाता है तां प्रेमी हमेशा अपने प्रीतम दियां बातां सुनदा है, प्रीतम दियां बातां करनियां चाहुंदा है। जग्यासु हमेशा ही वैरागी हो जाता है। रब दा प्रेमी प्रेम विच इन्ना रंगिया जाता है कि प्रीतम दियां कथावां सुन के विस्माद हो रहा है। मन विच मिलाप दियां खुशियां समाईयां नहीं जांदियां, जिवें बचन है, मन बिलास पए साहिब के अचरज देख वडाई। विचार अधीन शब्द दियां खीरलियां पंक्तियां हन, पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। सतगुरु जी शब्द दा तत् समझाउंदे होए फुरमान करदे हन कि जदों जीव दे पिछले जन्मां दे कीते शुभ कर्मां दे बीज अंकुर पैंदे हन, भाव पूरा गुरु मिलन नाल जीवन दे अनेरे जो अज्ञानता विच भरम विच माया दे मोह विच जीवन बतीत कर रहा सी, उस दे सुते हुए भाग जाग पैंदे हन। जन्म जन्म की सोई जागी तो भाव ये जेड़ा मन माया दे पलेख्यां विच सुत्ता रहा है वह मन हुण जाग पिया है। हुण मेरा मन प्रभु दी प्रीत विच रंगिया गया है, मेरे पाग जाग पए हन, हुण सानू प्रभु दा गुरु दा मिलाप हो गया है। बचन हन, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी।
1: प्रभ मिल बेकाओ प्रीत मन लागी, पाए लगाओ मोहे करो बेनती, को संत मिले बड़पागी। इस शब्द की व्याख्या की सी ज्ञानी कुलदीप सिंह होरा। प्रभु की महिमा अपरंपार है, उस दी शोभा बयान नहीं की जा सकती। मेरे लालन की शोभा सद नवतन मन रंगी शोभा, उस परमात्मा दी शोभा बेअंत है, उस दी शोभा उत्तम है। सुनते हैं जोगिंदर सिंह कंग होरां पासों वार्ता, प्रिय की सोभ सुहावनी नीकी।
2: यह अमृतमई बचन बाणी दे बोहित राग दे तनी महान संपादक अते शहीदां दे सिरताज पंचम पातशाह तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग मलार विच उचारण कीता होया है अते समुची मानवता दे पथ प्रदर्शक तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र अंग 1272 ते सुशोभित है। प्रभु प्यारे दी शोभा दा गुरबाणी विच बेशुमार अते बहुपक्षी वर्णन उपलब्ध हुंदा है। गुरबाणी परमात्मा दी उस्तत अते उसकी अपार शोभा नाल ओत प्रोत है। वख-वख बाणीकारां ने प्रभु शोभा प्रभु वडियाई अथवा प्रभु महिमा दा बड़े विस्थार नाल उलेख कीता है। प्रभु प्रीतम दी महिमा दे अमृतमई बचन जीव दे हिरदे नूं शांत करदे हन। समर्थ प्रभु प्रीतम दी न्यारी ते विलक्षण महिमा दा अति सुंदर मनमोहना बिंब पंचम दातार जी राग देव गंधारी विच इस प्रकार निरूपित करदे हन। अमृता प्रिय बचन तुहारे अत सुंदर मनमोहन प्यारे सब हो मद निरारे। प्यारा प्रभु अगम अगोचर अकथ अते पतित पावन है, उस वर्गा कोई होर हो ही नहीं सकता। वो जल थल आकाश पाताल हर थां व्यापक है। वो अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर है। वो मिठ बोलड़ा है अते कदे भी कौड़ा नहीं बोलता। ओ बख्शिश ते रहमत दा सोमा है। प्रभु प्यारा सर्व उच्च अते बहु बेअंत है। उसकी सर्व उच्चता अते अनंतता नूं पंजवें सतगुरु जी

मोहन प्राण मान रागीला बास रहे हो हियरे कै संगे पेख मोहे हो मन लीला। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये महले तीजे के एक ओ

तित नाम लाग ते तीस ते आवे जती तपीसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगे पता मैं चरण चित अमृत रस्या। तित नाम गुरु गंभीर गारु मत सतकर संगत उद्दरिया सोई नाम अचल भगते पवता।

0: नर गण गंधर्व छे दर्शन असासे पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत पव जल हरन गुर अमरदास तै पायो।
1: नाम तिहावें देव तेतीस अर साधक सिद्ध नार नाम खंड ब्रह्मांड तारे जय नाम समाद्यो हर सोग समकर सहारे नाम शिरोमण सर्वमय भक्त रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार नाम शिरोमण सर्वमय भगत रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार।
2: सत सूरो शील बलवंत सत पाए संगत सगण गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज तुरत तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जेह करतारे संजोग सतगुरु से सुख पायो अमर गुर कीतो जोग। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट बाणी तन सतगुरु सेवयो जिस पसैगत गम जानी कुल समूह समुद्र पायो नाम निवास सक्यथ जन्म का लुचरे गुर परस्यो अमर प्रगास सक्यथ जन्म का लुचरे गुर परस्यो अमर प्रगास।
3: बारिज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जोवे रिद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे अकहियो सोए रास्ते नहीं जातो मुखो भगत उचरे अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सच्चो कर्म काल जोड़

निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथाह अत बड सो पर सदा सब बिदरत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल।

कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुद डठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दैसाहो जिस पास बैठया सोहिया सबना दावेसाहो सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दैसाहो जिस पास बैठया सोहिया सबना दा वेसा।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गु बिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरे है कर नाउ ने दया वैताय। सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गो

दान बाबेक दान विश्वास दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगिया टल

सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम मनाए सी। हुकम मनिया होवे प्रवानता खसमे का महल पाए सी। खसमे पावे सो करे मन उचिंदिया सो फल पाए सी। तां दरगह पैंदा जाए सी।